सुप्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी FM शिमला से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की नवमी तिथि, तदनुसार 30 जून साल 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: यह है आकाशवाणी FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्रों से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के

0: ये प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav in New Delhi yesterday. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been

हिमांचली कार्यक्रम में आज बस इतना ही। FM शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर, और आइए अब सुनते हैं एक और भक्ति में प्रस्तुति, मानस गान।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती।

परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान, गायक गायक कलाकार थे शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्री, संगीत का सतीश भाटिया। एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश कान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला और आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का चौथा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों की खरीद पर 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में कल नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर और महापौर और जितेंद्र शर्मा को उपमहापौर चुना गया। पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राधा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनी गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर षड्यंत्र के तहत महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने सोलन में कहा कि राज्य सरकार भाजपा पार्षदों को अतिक्रमण के झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाई है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की रावी पंचायत में स्थानीय लोगों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह में शिरकत की। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
2: जन शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त

0: उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राज़ील भी राउंड ऑफ 16 में पहुँच गया है। ब्राज़ील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ₹103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ। आइए सुनते हैं चिंतन।

समुद्र तट की दीवार पर एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक जवान आदमी हाथ में धोती लोटा लिए आया। उसने धोती लोटा किनारे पर रख दिया और कपड़े उतारकर स्नान के लिए समुद्र में घुस गया। इतने में समुद्र की एक बड़ी लहर आई और उसको

अपने साथ ले गई। धोती लोटा किनारे पड़ा रह गया। वो आदमी फिर समुद्र से बाहर नहीं आया। दीवार पर बैठे सज्जन ये सब देख रहे थे। उनको जीवन के क्षण भंगुरता का साक्षात्कार हो गया था। वे भी दीवार से उतरकर अज्ञात स्थान की ओर चल दिए और भगवान के भजन में लग गए। फिर कभी लौटकर घर नहीं आए। त्याग में विचार कैसा? कोई मरता है तो क्या विचार करके मरता है? काशी से विद्या पढ़कर एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण नगर में आए। उनका सत्संग करते करते वहां के राजा की उनके साथ मित्रता हो गई। राजा ने उनको मकान बना दिया, विवाह करा दिया और अंत में अपना आधा राज्य भी उनको दे दिया। एक दिन राजा ने अपने ब्राह्मण मित्र से कहा, जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी है, बताओ तुम में और मुझ में क्या फर्क है? ब्राह्मण ने कहा कि कभी मौका पड़ने पर फर्क बताऊंगा। एक दिन दोनों घूमने के लिए चार घोड़ों की बग्घी पर चढ़कर बाहर गए। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि तुम फर्क पूछते थे, मैं अभी जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। राजा देखता रह गया और वो ब्राह्मण चला गया। फिर कभी लौटकर नहीं आया और राजा फर्क समझ गया। एक संत के पास एक व्यक्ति सत्संग के लिए आया करता था। उस व्यक्ति का विवाह हो गया तो उसका सत्संग में आना कम हो गया। जब संतान हो गई तो सत्संग में आना बहुत ही कम हो गया। संत ने उससे कहा कि तू कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जा और सत्संग कर ले। वो बोला, मेरी स्त्री का मुझसे बहुत बड़ा प्यार है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं कैसे आऊं? संत बोले, ये तेरा वहम है, ऐसी बात है नहीं। वो व्यक्ति माना नहीं तो संत ने कहा कि तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो तू परीक्षा करके देख ले। वो व्यक्ति इसके लिए तैयार भी हो गया। संत ने उसको प्राणायाम के द्वारा श्वास रोकना सिखा दिया और सब बात भी समझा दी। एक दिन सुबह के समय उस व्यक्ति ने अपनी स्त्री से कहा, खीर और लड्डू बनाओ, आज हम खीर और लड्डू ही खाएंगे। स्त्री ने बढ़िया खीर और लड्डू बना दिए। थोड़ी देर में वो व्यक्ति बोला, मेरे पेट में पीड़ा हो रही है। स्त्री ने कहा, आप लेट जाओ। वो व्यक्ति पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर लेटने के बाद उसने प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास ऊपर चढ़ा लिए। स्त्री ने देखा कि पति का शरीर तो शांत हो गया है, अब क्या करें? उसने विचार किया कि खीर और लड्डू बने पड़े हैं, लड्डू तो कई दिन तक रह जाएंगे पर खीर खराब हो जाएगी। अगर मैं अभी रोना चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो पड़ोसी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर खीर यूं ही रह जाएगी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बच्चे को साथ लेकर जल्दी जल्दी खीर खा ली। लड्डू डिब्बे में बंद करके रख दिए। फिर उसने दरवाजा खोल दिया और पति के पास बैठकर रोने लगी। रोते हुए वो बोली, साईं स्वर्ग पधारिया, कुछ मैनू भी आखो। इतने में वो व्यक्ति भी उठ बैठा और बोला, खीर लबालब पा गई, कुछ पिन्नी भी चखूं।

0: अभी आपने सुना चिंतन, वाचक स्वर डॉक्टर हुकुम शर्मा के थे।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम शिमला पर मनोरंजन के साथ साथ आपको देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट करवाने का काम रहता है हमारा। तो इस सिलसिले में आज आप कौन कौन से कार्यक्रम एफएम शिमला पर सुन सकते हैं, चलिए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बात

करते हैं देश और दुनिया की हलचल की, जो आप सुन सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आप सुन सकते हैं और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़। दोपहर 12 बजे और 12:05 पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं इसके अलावा दोपहर 1 बजे और 1:05 पर, दोपहर 2:15 पर और शाम 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे सुनेगा न्यूज़ एट 9। और दिन का आखिरी अपडेट रात 11 बजे और 11:05 पर। और अब बात करते हैं अपने राज्य की, अपने शहर की। एफएम शिमला से आप सुनेंगे एफएम न्यूज हेडलाइंस सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर। और हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। सुबह की खुशनुमा शुरुआत होगी अब से थोड़ी ही देर बाद 7:15 पर, जब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। सुबह 8:45 पर सुरों का पहला सफर शुरू होगा फिल्म संगीत के साथ। 9:30 पर प्रकृति और पर्यावरण की बातें होगी कार्यक्रम कुदरत के रंग में। सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य आज आप सुनेंगे राग छाया कार्यक्रम। 11:05 पर यादों के गलियारों से पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। सुबह 11:30 पर हमारी माटी की महक लेकर आएगा पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। 12:10 पर एक बार फिर गुनगुनाइएगा फिल्म संगीत के साथ। दोपहर 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और दोपहर 1:10 पर आज आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां आप जुड़ सकते हैं सीधे हमारे साथ। प्रोग्राम रहेगा हेलो शिमला।

दोपहर 2 बजे हर मूड के गानों का अनूठा संगम सबरंग कार्यक्रम सुन सकते हैं आप, और 2:30 पर खेल खिलाड़ी कार्यक्रम, 3:05 पर सुनेगा जिले की चिट्ठी, 3:10 पर ओल्ड हिट्स आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत के तहत, और दोपहर 3:30 पर हमारे युवा दोस्त सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, 4 बजे आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। क्षेत्रीय बोलियों के कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे 4:20 पर सिरमौरी कार्यक्रम, 5:20 पर सुनेगा स्पीति कार्यक्रम, और 4:50 पर महाश्वी कार्यक्रम सुन सकते हैं आप। तो वहीं 5:50 पर आप सुनेंगे कुछ हिमाचली लोकगीत, 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम, 6:30 पर कांगड़ी लोकगीत आप सुन सकते हैं, और 6:35 पर लाहौली कार्यक्रम सुन सकते हैं आप। साय 7:10 पर किसान और बागवान भाई बहनों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कृषि जगत कार्यक्रम, 8 बजे सुनेगा भूले बिसरे गीत, 8:30 पर फिल्म संगीत, 9:15 पर एक फिल्म से कार्यक्रम और दिल की आवाज़ भी सुन ये कार्यक्रम सुनेगा, रात 9:30 पर 10 बजे महफिल सजेगी रूहानी गज़लों की, और 10:30 पर दिन को करेंगे विदा सुनते हुए सदाबहार नगमे। तो ये है वो कार्यक्रम जो आज आप सुनने वाले हैं FM शिमला 103.7 MHz पर, और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। आप सभी सुनने वालों को डिंपल ठाकुर का नमस्कार सुप्रभात। पहाड़ों की रानी शिमला के आंचल में बसी इस हसीन सुबह में लेकर हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। दोस्तों, जून महीने का ये आखिरी दिन है, कैलेंडर का एक और पन्ना पलटने वाला है, लेकिन हमारी और आपकी चाहत का जो सिलसिला है वो हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल नया और तरोताज़ा है। और अगले कुछ मिनटों तक आपके इस खूबसूरत सफ़र में मैं आपकी हम सफ़र बन के आपके साथ साथ चलूँगी, जहाँ हम मिलकर याद करेंगे इतिहास के कुछ सुनहरे पन्नों को, बांटेंगे आपके साथ आज का अनमोल विचार और सुनेंगे कुछ सुरीले नगमे। तो चलिए अपने

भी बिल्कुल नया और तरोताज़ा है। और अगले कुछ मिनटों तक आपके इस खूबसूरत सफ़र में मैं आपकी हम सफ़र बन के आपके साथ साथ चलूँगी, जहाँ हम मिलकर याद करेंगे इतिहास के कुछ सुनहरे पन्नों को, बांटेंगे आपके साथ आज का अनमोल विचार और सुनेंगे कुछ सुरीले नगमे। तो चलिए अपनी चाय का कप उठाइए, आराम से बैठिए और संगीत के इस पहले सफर का आनंद लीजिए। Thank you.

सोनू की टीटू की स्वीटी, इस फिल्म का सॉन्ग भी आपने एंजॉय किया अरिजीत सिंह, प्रकृति कक्कड़ और अमाल मलिक की आवाजों में। और अब इस गीत के बाद वक्त है आज के विचार का। दोस्तों, आज का विचार बहुत गहरा है। कलियों की तरह मुस्कुराना और खिलना ही जीवन है, क्योंकि मुरझाई हुई चीजों को तो अक्सर लोग शाखों से अलग कर देते हैं। और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जीवन में मुश्किलें, उतार चढ़ाव तो मौसम की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी ताकत इस बात में है कि हम हर सुबह एक नई मुस्कान, एक नई उम्मीद के साथ उठें। जब हम पॉजिटिव और खुश मिजाज रहते हैं तो पूरी दुनिया हमसे जुड़ना चाहती है, और इसके विपरीत उदासी हमें हमेशा पीछे की ओर धकेलती है। तो बस आज की इस सुबह में एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और सारी टेंशन छोड़ के अपने आज के दिन को शानदार बनाइए। FM शिमला के साथ साथ।

शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में पीके फिल्म का ये सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया। इस वक्त आप एंजॉय कर रही हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला एफएम शिमला पर। और अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 30 जून की ये तारीख इतिहास के पन्नों में आखिर क्यों खास है। भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 30 जून 1855 को यानी कि 1857 की क्रांति से भी पहले झारखंड के भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। इसे सशस्त्र संथाल विद्रोह या फिर हूल दिवस भी कहा जाता है, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक अटूट पहचान है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर रहे विज्ञान की और भूगोल की, तो आज का जो दिन है वो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना का गवाह बना। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में पोद कामेनाया तुंगसुका नदी के पास अंतरिक्ष के जो है एक आए विशाल उल्का पिंड के कारण हवा में ही भारी विस्फोट हुआ था। और ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि लगभग 2150 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मौजूद लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पल भर में ही जमींदोज हो गए थे। और आपको बता दें कि ये आधुनिक इतिहास में पृथ्वी पर हुआ सबसे बड़ा आकाशीय प्रभाव माना जाता है। भारत के गौरव और दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव का जन्म आज ही के दिन 30 जून 1934 को बेंगलोर में हुआ था। सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें साल 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। और आपको ये बता दें कि सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ये सम्मान पाने वाले वे तीसरे वैज्ञानिक हैं।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में अभी बातें और भी हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए यूं ही एफएम शिमला। फिलहाल कार्यक्रम में ये एक ब्रेक हम ले लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम हर दिन किसी न किसी ऐप, वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल करते हैं। नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या बैंकिंग ऐप का उपयोग करना हो, हर जगह एक सामान्य प्रक्रिया दिखाई देती है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ज्यादातर लोग इन्हें पढ़े बिना ही नीचे दिए गए आई एग्री या एक्सेप्ट का बटन क्लिक कर देते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे किसी भी शर्त को स्वीकार करना हमारे भविष्य में हमारे लिए कई परेशानियों का कारण बन सकता है। इसके बहुत सारे नुकसान हमारे लिए हो सकते हैं, खास करके हमारी जो निजी जानकारी है उसका दुरुपयोग हो सकता है। कई ऐप और वेबसाइट मोबाइल नंबर, ईमेल, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, फोटो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच मांगते हैं। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस यानी नियम और शर्तों में ये बताया जाता है कि कंपनी आपके डेटा का उपयोग किस तरह करेगी। अगर आपने बिना पढ़े सहमति दे दी तो आपकी जानकारी विज्ञापन कंपनियों या अन्य साझेदारों के साथ साझा हो सकती है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन और अतिरिक्त शुल्क भी है आपको आप जो है आपसे लिया जा सकता है। कई ऐप क्या करते हैं कि कुछ दिनों का मुफ्त ट्रायल देते हैं, इसके लिए वे खाता या पेमेंट की जानकारी मांग सकते हैं। नियम और शर्तों में अक्सर ये लिखा होता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन अपने आप शुरू हो जाएगा। जानकारी के अभाव में लोगों के बैंक खाते या कार्ड से पैसे कटने लगते हैं, इसलिए अगर मुफ्त ट्रायल लिया है तो उसके खत्म होने से पहले ही सब्सक्रिप्शन को रद्द कर दें। इसके अलावा कई डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने नियमों के उल्लंघन पर अकाउंट बंद करने का अधिकार रखते हैं। अगर उपयोगकर्ता ने नियम पढ़े नहीं हैं तो वो अनजाने में किसी शर्त का उल्लंघन कर सकता है और उसका अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख्याल रखें। टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी लंबे और कानूनी भाषा में लिखे होते हैं, इसलिए एक एक शब्द पढ़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान जरूर दें। डेटा संग्रह और प्राइवेसी पॉलिसी, भुगतान और रिफंड से जुड़े नियम, सब्सक्रिप्शन खत्म करने की प्रक्रिया, कंपनी की जिम्मेदारी और सीमाएं, डेटा को साझा करने से जुड़ी जानकारी। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो खुद को आप सुरक्षित रख सकते हैं। जो आजकल जो है डिजिटल दुनिया में फ्रॉड्स होते हैं, उन फ्रॉड से आप खुद को बचा सकते हैं। तो एफएम शिमला पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। आप यूं ही हमारे साथ सुनते रहिए और बने रहिए।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: जॉब का जो यूज़ है वो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं और हमें शॉर्टकट्स जो है याद नहीं आते हैं कि शॉर्टकट कीज़ क्या है, हमें अगर कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे हम करें। तो बात करते हैं बड़े काम के इन छोटे छोटे शॉर्टकट्स की। कंप्यूटर पर काम करते समय कई ऐसे विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिनकी मदद से हम रोज़मर्रा के काम कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। सबसे पहले बात स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस आर, इसे दबाते ही स्नैपिंग टूल का स्क्रीन रिकॉर्डर खुल जाएगा। इसके बाद जिस हिस्से को रिकॉर्ड करना है उसे चुनें, स्टार्ट पर क्लिक करें और काम पूरा होने पर स्टॉप दबाकर वीडियो सेव कर लें। ऑनलाइन क्लास या ट्यूटोरियल का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा विंडो प्लस एम, ये जो है मिनिमाइज़ के लिए रहता है। एक साथ कई प्रोग्राम खुले हैं और तुरंत डेस्कटॉप पर जाना है तो ये शॉर्टकट दबाएं, सभी खुली विंडो तुरंत मिनिमाइज़ हो जाएगी। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाकर उन्हें दोबारा पहले की स्थिति में भी लाया जा सकता है। और आपको जिस जगह पर इमोजी चाहिए, इमोजी पैनल आप खोलना चाहते हैं, वहाँ कर्सर रखें और शॉर्टकट दबाएं विंडो प्लस डॉट, इमोजी विशेष चिन्ह और अन्य प्रतीक तुरंत आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा विंडो प्लस एच, लंबे नोट्स, ईमेल या कोई दस्तावेज टाइप करने के बजाय बोलकर आप लिख सकते हैं। कर्सर जहां हो वहां ये शॉर्टकट दबाएं और बोलना शुरू करें, बोले शब्द यहां पर टाइप हो जाएंगे। तो ये कुछ बड़े काम के छोटे छोटे कंप्यूटर पर काम करने के लिए शॉर्टकट्स की हैं जो आप यूज़ करके कुछ मिनटों का काम कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर सकते हैं।
1: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या होगा?
1: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
2: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
2: अच्छा,
1: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
3: हाँ।

और आज का हमारा एक बढ़िया सा संदेश सभी सुनने वालों के लिए। सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर की अंदरूनी घड़ी यानी बॉडी क्लॉक को सही रखने में हमारी मदद करती है। ये शरीर में विटामिन डी के लिए भी ज़रूरी है। तो क्या करना है, सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट धूप में समय ज़रूर बिताना है हमें, और कोशिश करनी है कि समय जो ये समय है वो बाहर प्राकृतिक रोशनी में हम ज़रूर बिताएँ। और इसके अलावा आपकी हमारी हम सभी की एक आदत अक्सर है, ख़ास करके जब हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, रात में हम मोबाइल के नोटिफिकेशन, स्क्रीन की रोशनी और बार बार फ़ोन जांचने की आदत जो है कई बार होती है, और इससे क्या होता है कि इससे नींद की गुणवत्ता ख़राब हो सकती है। तो क्या करना है, सोते समय फ़ोन को अपनी बेड से थोड़ा दूर रखना है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर देना है, और मोबाइल इंटरनेट आपने बंद ज़रूर करना है, और अपने फ़ोन को अपने से काफ़ी दूर जाकर रखना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ख्याल रखेंगे तो हम अपनी हेल्थ में भी सुधार कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हम अपने दिनचर्या को भी अच्छे से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रेस्ट प्रॉपरली करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिन है वो भी अच्छे से व्यतीत होगा।

0: वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की अपनी बोली में अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
0: जी हाँ, आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:20 से 7:05 तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
1: नियम और शर्तें लागू।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। आपको बता दें, आज दोपहर 1:10 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला आप सुन सकते हैं, जिसमें हमारे श्रोता साथी अपनी कॉल के माध्यम से अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं दोपहर 1:10 से 2 के मध्य। 2808034 2808152 ये शिमला के नंबर्स हैं और शिमला का एसटीडी कोड है, जो शिमला से बाहर के श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 0177। तो दोपहर 1:10 से 2 के मध्य जुड़ना ना भूलिए इस लाइव प्रोग्राम के साथ। और आज सुबह 10 से 11 के मध्य आप आनंद लेंगे रागों पर आधारित कुछ बॉलीवुड गानों का राग छाया कार्यक्रम में। आप ट्यून इन हैं इस वक्त एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और एफएम शिमला पर अब आप सुनेंगे एफएम

0: news headlines. नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी किया। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भाजपा के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने जिलाधीशों और एसडीएम से राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की तिथियां घोषित करने, संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्य करने की अपील की है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए इस वर्ष 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
1: मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
2: 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज
3: प्रसारित आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपये तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के

0: पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की, इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो

0: माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिक्काल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने

0: जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of

0: The recovery of the waterway. Iran and US exchanged missile strikes over the weekend, collapsing trade in the Strait of Hormuz for multiple days. Later, US and Iranian officials agreed to temporary ceasefire yesterday after President Trump threatened to escalate the conflict. In football, Gabriel Martinelli scored the winning goal late in injury time to give five-time champion Brazil a 2-1 win over Japan in a round of 32 clash of the FIFA World Cup at Houston Stadium in Texas, US last night. In another round of 32 fixture, Germany got eliminated from the tournament after a 1-1 draw against Paraguay that led to a penalty shootout in Foxborough. Gustavo Alfaro's men held their nerve in the penalty shootout to secure a historic 4-3 victory. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. Heavy rainfall is also expected over Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
1: Thank you, Abhishek. A month-long special intensive revision SIR of the electoral roll beginning today is covered by some of the dailies. SIR process begins in Delhi and four states today, reports the Asian Age. Voter verification drive begins in Delhi today, leads the Times of India. The statesman quoting Prime Minister Narendra Modi says, Indian diaspora living bridge between India, Seychelles. Bengal passes preventive detention legal curbs bill, notes the Hindu. Prime Minister to skip Khamenei's state funeral leads the Asian Age. And finally, Delhi mandates all two new wheelers to be electric from 2028 to fight pollution, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Minister announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicles policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. FM शिमला पर आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस. नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज. सतलुज नदी में लगातार बढ़ रहे जल प्रवाह को देखते हुए करछम बांध प्रबंधन ने आज अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया है. बांध प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में नदी में जल प्रवाह बढ़ रहा है. करछम बांध से रेडियल गेटों के माध्यम से अतिरिक्त 100 क्यूमिक पानी छोड़ा जाएगा. इसके बाद रेडियल गेटों से कुल जल निकासी 195 क्यूमिक हो जाएगी. वहीं 83 क्यूमिक पानी सिल्ट फ्लशिंग गेट के माध्यम से छोड़ा जा रहा है. करछम बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में कुल जल निकासी लगभग 278 क्यूमिक रहेगी. बांध प्रबंधन ने प्रशासन और नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने तथा आवश्यक एहतियात कदम उठाने की अपील की है. उत्तर प्रदेश के जनपद बिजौर की 14 वर्षीय एक लड़की जो अपने माता पिता के साथ मनाली घूमने आई थी, क्लब हाउस के समीप बीती शाम मनालसू नाले में अचानक बह गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तत्काल खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. व्यापक तलाशी अभियान के बाद बालिका का शव मनाली स्थित वॉल्वो बस स्टैंड के समीप ब्यास नदी से बरामद किया गया. शव को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मनाली अस्पताल दिया गया है. लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खदराला में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में कहा कि एहतियात महत्व वाले खदराला मार्ग को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से मामला उठाया जाएगा. उन्होंने बताया कि सुंगरी मार्ग के सुधार के लिए 1,50,00,000 रुपये जारी किए गए हैं और अन्य संपर्क मार्गों पर भी विकास कार्य जारी है. उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन, सड़क संपर्क, सेब, आलू उत्पादन

0: और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया। मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने के लिए खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने का अपील की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाई है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की रावी पंचायत में स्थानीय लोगों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने कहा कि खंड विकास समिति जुब्बल की सभी 15 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि जिला परिषद की 3 सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे एफएम न्यूज हेडलाइंस 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं एफएम शिमला के साथ और आइए अब सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम।

किशन वर्मा की आवाज में लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आपने ये लोक भजन सुना। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह की आवाज में।

लोक संगीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। और ये जो लोकगीत हैं ये सिर्फ गीत नहीं है, जहाँ तक देखा जाए ये जो है हमारी परंपराओं की एक जीती जागती तस्वीर है। इनमें हमारी खेती किसानी की खुशबू है, हमारे पहाड़ों की ठंडी हवा है, नदियों का कलकल बहता पानी है और सबसे बढ़कर हमारे अपनों का प्यार। फेस्टिवल हमारे सुख दुख और शादियों की रौनक होती है। किताबों में कहाँ मिलती है संस्कृति, हर जगह ये लोकगीत ही हैं जो विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। इसी बीच आइए सुनते हैं नारायण सिंह बंसल की आवाज़ में अगला लोकगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही, और अब ले चलते हैं आपको सपनों की उस नगरी में जहां हर जज्बात के लिए कहानी है और हर कहानी के लिए एक लाजवाब धुन। जी हाँ, FM शिमला पर अब वक्त हो चला है सिनेमा के जादू को महसूस करने का, यानी फिल्म संगीत कार्यक्रम का।

महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाज़ों में फना फिल्म का ये सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया कार्यक्रम में। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत FM शिमला पर और कार्यक्रम में अगला सॉन्ग आइए सुनते हैं हम और आप मिलकर आर्यन फिल्म से। आवाज़ें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

0: शुभ वाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की अपनी बोली में अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
0: जी हाँ, आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:00

0: 20 मिनट से 7:05 तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
1: नियम शर्तें लागू।

निधि चौहान हार्डकोर और राजा हसन की आवाज़ों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गाना बचना ए हसीनो इस फिल्म से।

0: फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
0: ट्यून इन है आप FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से कौन से खास खास कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। आपको बता दें कि आज जो है श्रोता साथी शाम 6:30 पर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला द ओवल लंदन से होने वाला है और इस मैच का जो है हाल, आंखों देखा हाल जो है आप लाइव प्रोग्राम लाइव सुन सकते हैं शाम 6:30 से। और इस मैच में आमने सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ की टीमें। तो क्रिकेट के इस रोमांचक सीधे प्रसारण का आनंद आप लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके अलावा आपको बता दें 9:30 पर सुरबेला कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद अल्लाह रखा का तबला वादन जो कि ताल मदताल पर आधारित रहेगा। 10:00 से 11:00 के मध्य ईमेल बेस्ड कार्यक्रम रिमझिम का आनंद आप उठा सकते हैं। 11:05 पर लोक संगीत कार्यक्रम सुनिएगा और 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकते हैं। दोपहर 12:10 पर फिल्म संगीत में महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनेगा। 12:20 पर 1:10 का समय रहेगा सैनिकों के लिए कार्यक्रम का। 2:00 सुनिएगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम और खेल खिलाड़ी।

ये कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 2:30 पर। 3:05 पर जिले की चिट्ठी। 4:20 से आप सुनेंगे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के तहत सबसे पहले सिरमौरी कार्यक्रम, 4:50 पर महास्वी कार्यक्रम, स्पीति कार्यक्रम का समय रहेगा 5:20 का, 5:50 पर आनंद लीजिए लोकगीतों का लोकगीत में, और 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात 10:45 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। तो ये है वो कार्यक्रम जो आज आप आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से सुन सकते हैं, और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। एक सौ तीन

तो ये है वो कार्यक्रम जो आज आप आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से सुन सकते हैं, और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये समाचार सुन सकते हैं।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का लिया फैसला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, खदराला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी हुई मजबूत। पिछले 3 वर्षों में 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का हुआ उत्पादन। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने एक संयुक्त बयान में कांग्रेस सरकार पर निराधार बयानबाजी करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में प्री मॉनसून सक्रिय। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 1 से 5 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि खदराला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। शिमला जिले के खदराला में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में कल उन्होंने कहा कि पर्यटन व क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इस मार्ग का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1962 से पूर्व ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसे बाद में राज्य राजमार्ग का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि सुंगरी मार्ग के सुधारीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि युवा देश व प्रदेश का भविष्य है और स्वस्थ समाज

0: के निर्माण के लिए युवाओं का स्वस्थ व जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से नशे, विशेषकर चिट्टा जैसी घातक प्रवृत्तियों से दूर रहने का भी आह्वान किया। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत हुई है और किसानों की मेहनत से परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए, जिससे 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: मंडी जिले में रेशम उद्योग अब ग्रामीण समिति की नई पहचान बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत से हजारों परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 27 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ है। वही 84,000 से अधिक उन्नत शहतूत पौधे भी वितरित किए गए हैं। सिलेक्ट समग्र 2 योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 150 शीतम उत्पादकों को 1,63,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि रेशम उद्योग मंडी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग केवल अस्थायी और आवश्यकता आधारित व्यवस्था होगी और इसे नियमित सरकारी रोजगार का विकल्प नहीं माना जाएगा। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ये संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत जिन पदों पर नियमित भर्ती हो चुकी है या स्वीकृत पद भरे हुए हैं, वहां अब आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। विभागों को स्थायी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भाजपा के खिलाफ निराधार बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। कल शिमला में एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने जिलाधीशों और SDM से राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग की है। नेताओं ने अधिकारियों से संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्य करने की अपील की। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश को प्रभावित कर रही है, जिनका जनता समय आने पर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया गया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। कुल्लू जिले के मनाली में एक 14 वर्षीय बालिका की मनालसू नाले में बहने से मृत्यु होने का समाचार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया गया। बालिका का शव व्यास नदी से बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त बालिका उत्तर प्रदेश के बिजनौर की निवासी थी, जो माता पिता के साथ मनाली भ्रमण पर आई थी। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में CCTV कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। प्रथम पूजा के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा

0: इसके महानिरीक्षक डॉक्टर अकुन सभरवाल ने पवित्र गुफा और बरारी मार्ग में चिकित्सा सहायता केंद्रों का उद्घाटन किया। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आने को लेकर परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने जल्द प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने और विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से भी बचने का आग्रह किया है। विभाग ने लोगों से प्रशासन द्वारा मौसम से जुड़ी चेतावनी और एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं पूनम भारद्वाज।
0: अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। राधा पालमपुर, सुमन मंडी की मेयर शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, मंडी में भाजपा और पालमपुर में कांग्रेस का कब्जा। अमर उजाला और दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द हैं, पालमपुर में कांग्रेस की राधा, मंडी में भाजपा की सुमन बनी मेयर। पंजाब केसरी के शब्द हैं, जीपीडीपी तैयार होने पर ही पंचायतों को मिलेगी 481 करोड़ की ग्रांट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पंचायतों को वित्तायोग का 481 करोड़ लेने को बनाना होगा डेवलपमेंट प्लान। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, अधिकारियों के पदों में की जाएगी कटौती। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, मॉनसून आज से रफ्तार पकड़ेगा, अगले 48 घंटों में हिमाचल में एंट्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का लिया फैसला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, खदराला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी हुई मजबूत। पिछले 3 वर्षों में 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का हुआ उत्पादन। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने एक संयुक्त बयान में कांग्रेस सरकार पर निराधार बयानबाजी करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में प्री मॉनसून सक्रिय, मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 1 से 5 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी ये समाचार रिले किए गए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
5: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज, 103.7 MHz FM शिमला।
6: हर खुशी अब लगे ना मीठी।
5: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। और एफएम शिमला पर समय हो चला है प्रकृति के अनमोल झरोखों को खोलने का, यानी आपके अपने चहेते कार्यक्रम कुदरत के रंग का। श्रोताओ, हमारी देवभूमि का ये अंचल, ये शिमला प्रकृति की अनूठी चित्रकारी का एक जीवंत कैनवास है। ये सिर उठाती हरी भरी वादियाँ, देवदार के आगोश से छनकर आती गुनगुनी धूप और फिजाओं में घुली ये मखमली ठंडक, जैसे कुदरत खुद हर पल एक नया उल्लास बिखेर रही हो। प्रकृति का हर रंग हमें मौन रहकर भी जीवन को भरपूर जीने का एक नया सलीका, एक नया दृष्टिकोण हमें सिखा जाता है। तो आइए फिर भागदौड़ भरी इस जिंदगी से चंद लम्हे चुरा कर खुद को सराबोर करते हैं सृष्टि के इस विहंगम एहसास में, और शुरू करते हैं सुरों और वादियों का ये खुशनुमा सफर। आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए एफएम शिमला।

तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, ये गाना आपने सुना मंगल पांडे फिल्म से। और श्रोताओं, जब बात अदाओं की हो तो हमारी इस प्रकृति की अनमोल अदाओं का कोई सानी नहीं है। तभी तो दिल से ये पंक्तियाँ निकल कर आती हैं कि दरो दीवार पर है घोंसले कितने परिंदों के, कहूँ कैसे कि कुदरत ने ये घर वीरान रखा है। जमीन की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है, नए पत्तों की आहट से शाखें भीग जाती है, और कुछ तो बात है इन पहाड़ की हवाओं में जो तन के साथ साथ मन भी छू लेती है। कुदरत के रंग कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। प्रकृति और इंसान एक दूसरे से बेहद गहराई से जुड़े हैं। वास्तव में हम भी बाकी प्राणियों की तरह इस विशाल प्रकृति का ही एक छोटा सा हिस्सा है। आज भले ही हमने अपने चारों ओर विकास और तकनीक की एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर ली हो, लेकिन जब भी फुर्सत के कुछ लम्हे हमें मयस्सर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये दिल प्रकृति की खोज में निकल ही पड़ता है, और हम चल पड़ते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों को निहारने। क्योंकि ये गगनचुंबी पहाड़ हमें हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि कुदरत के कितने पास हैं हम, और अपने चारों तरफ चाहे कितनी ही ऊंची दीवारें और इमारतें क्यों ना चुन लें हम, फिर भी हमारा जो मन है वो इस प्राकृतिक वातावरण में खुलकर सांस लेने के लिए मचल ही जाता है। तब सचमुच ये महसूस होता है मानो ये शांत पहाड़ हमें आवाज़ देकर अपने पास बुला रहे हो। और पहाड़ों की इसी पुकार को सुनते हुए आज कुदरत के रंग में हम आपको सीधे लिए चलते हैं सिरमौर की बेहद हसीन राजगढ़ घाटी की ओर। जी हाँ, वही राजगढ़ घाटी जिसे एशिया का पीच बाउल यानी कि आड़ू की खूबसूरत घाटी भी कहा जाता है। इन दिनों वहाँ के बागानों में आड़ू की महक है, देवदार के घने जंगल हैं और चोटियों को सहलाते हुए बादल, मानो प्रकृति ने अपना सारा लाड प्यार जो है इसी घाटी पर लुटा दिया हो। तो आइए राजगढ़ की इन वादियों की सुरीली सैर पर बढ़ते हैं आगे इस गीत के साथ।

कुदरत के रंग कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे प्यारे हिमाचल में ऐसी बहुत सी अनछुई और हसीन जगह हैं जहां आप बहुत कम खर्चे में यानी कम बजट के अंदर ही कुदरत के बेमिसाल नज़ारों का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं, और ऐसी ही ये जगह है राजगढ़ घाटी। राजगढ़ सिरमौर जिले का सबसे बड़ा उपमंडल है। लगभग 810 वर्ग किलोमीटर के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैली ये घाटी जितनी विशाल है उतनी ही मनमोहक भी। इसे पहाड़ों का आड़ू उद्यान या फिर एशिया का पीच पाउल भी कहा जाता है। यहाँ के सीधे साधे और मेहनती लोगों की आय का मुख्य साधन खेती बाड़ी ही है। इन दिनों जब आप इस घाटी से गुजरेंगे तो आपको चारों तरफ आड़ू और अन्य गुठलीदार फलों के लहलहाते बगीचे नजर आएंगे। यहाँ की घाटियों में बहती सुरीली नदियाँ, सीढ़ीदार खेत और ताज़ा सब्जियों से महकते बागान कुदरत के किसी हसीन तोहफे से कम नहीं लगते।

जब आप राजगढ़ की वादियों की सैर पर निकलेंगे तो हर 10 से 20 किलोमीटर के बीच सड़क के किनारे आपको पहाड़ों से बहते हुए कुछ खूबसूरत झरने भी दिखाई देंगे। प्राकृतिक चट्टानों के बीच कलकल करते इन झरनों का सौंदर्य और इनकी ठंडी फुहारें आपके मन को एकदम ताजगी से भर देंगी।

और श्रोताओं, इस घाटी का सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण है यहाँ की पावन चोटियों पर विराजमान शिरगुल महाराज जी का भव्य मंदिर। समुद्र तल से लगभग 3640 मीटर की अद्भय ऊंचाई पर बना ये ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो करीब 5000 साल पुराना माना जाता है। इस पावन धाम की महिमा इतनी अगाध है कि हर साल देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिव और शिरगुल महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी इस भागदौड़ से दूर रोमांच और सुकून से भरे छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो एक बार राजगढ़ घाटी जरूर आइए। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ कदम रखते ही आपको कई तरह के दुर्लभ वनस्पतियाँ, जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यहाँ मुख्य रूप से देवदार के घने और ऊंचे वृक्ष हैं, जिनकी छाँव में आप पशु पक्षियों की अनेक सुंदर प्रजातियों को करीब से निहार सकते हैं।

कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ और आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। कुल्लू जिले के मनाली में एक 14 वर्षीय बालिका के मनालसू नाले में बहने से मृत्यु होने का समाचार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन विभाग

0: द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया गया। बालिका का शव ब्यास नदी से बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त बालिका उत्तर प्रदेश के बिजनौर की निवासी थी, जो माता पिता के साथ मनाली घूमने आई थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया। मंत्रालय ने कहा है कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में CCTV कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि खदराला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला एक बार फिर केंद्र से उठाया जाएगा। शिमला जिला के खदराला में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में कल उन्होंने कहा कि सुंगरी मार्ग के सुधारीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि युवा देश व प्रदेश का भविष्य है और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं का स्वस्थ एवं जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से नशे, विशेषकर चिट्टा जैसी घातक प्रवृत्तियों से दूर रहने का भी आह्वान किया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। सतलुज नदी में लगातार बढ़ रहे जल प्रवाह को देखते हुए करछम बांध प्रबंधन द्वारा आज अतिरिक्त 100 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद रेडियल गेट से कुल जल निकासी 195 क्यूमेक्स हो जाएगी। प्रबंधन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक एहतियात कदम उठाने की अपील की है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। और एफएम शिमला पर समय है राग छाया कार्यक्रम का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन चुनिंदा फिल्मी गानों की जो बेहद खूबसूरत शास्त्रीय रागों पर आधारित है। तो बिना देर किए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं और सुनवाते हैं आपको एक गाना जो कि हमने लिया है। राग यमन पर आधारित ये गाना है और आवाज़ इसमें मुकेश की है। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

मुकेश जी की आवाज़ में अभी आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया राग छाया कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जिस राग की बारी है उसे संगीत में बहुत ही चंचल श्रृंगार रस से भरपूर और मधुर माना जाता है। जी हाँ, बात कर रही हूँ राग खमास की। इस राग की खासियत है कि ये सुनते ही मन में एक अजीब सी खनक और खुशी पैदा कर देता है। आर डी बर्मन साहब ने इस राग का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल किया था फिल्म अमर प्रेम में। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अमर प्रेम फिल्म से राग खमास पर आधारित ये गाना।

वाकई में लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारा काम है और हमारी कोशिश है आपको बेहतरीन से बेहतरीन संगीत देना। आप सुन रहे हैं इस वक्त राग छाया कार्यक्रम एफएम शिमला पर। अगला सॉन्ग आपके लिए प्ले कर रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म से, जो कि बेस्ड है राग अहिर भैरव पर।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कोहिनूर फिल्म से अभी आपने ये गाना एंजॉय किया, और आइए अब सुनते हैं बॉबी फिल्म का अगला गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है इस गीत पर।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और सुन रहे हैं रात छाया कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं स्वामी फिल्म का केत यशुदास की आवाज में।

0: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मन्ना डे की आवाज़ में अभी आपने सीमा फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गाना, जो कि है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और फिल्म का नाम है सूरज। तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं सूरज फिल्म के इस गीत को।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 11 बजने को है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ओम बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियाँ बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने आगे कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाबदेह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की संसद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है और इसने हमेशा संविधान की भावना, लोकतांत्रिक परंपराओं और जन प्रतिनिधित्व की गौरवशाली विरासत को सशक्त रूप से कायम रखा है। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत हुई है और किसानों की मेहनत से परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध करवाए गए, जिससे 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कुकून का उत्पादन हुआ। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: मंडी जिले में रेशम उद्योग अब ग्रामीण समिति की नई पहचान बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत से हजारों परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 27 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ है। वही 84,000 से अधिक उन्नत शहतूत पौधे भी वितरित किए गए हैं। सिलेक्ट समग्र 2 योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 150 शीतम उत्पादकों को 1,63,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि रेशम उद्योग मंडी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर

0: दी गई है। यात्रा मार्ग आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जल्द प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने और विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। सतलुज नदी में लगातार बढ़ रहे जल प्रवाह को देखते हुए कड़छम बांध प्रबंधन द्वारा आज अतिरिक्त 100 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद रेडियल गेटों से कुल जल निकासी 195 क्यूमैक्स हो जाएगी। प्रबंधन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। सुबह के 11:06 हो चुके हैं। हम हाजिर हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उस महफिल में जहां हर धुन अपने साथ सुनहरे दौर की खुशबू लेकर आती है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों पुरानी फिल्मों के गीतों के उन अनमोल नगमों के लिए जो आज भी दिलों पर राज करते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से और आपके साथ है शैलजा चौहान। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शहीद फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, गीत और संगीत प्रेम धवन का।

दोस्तों कुछ गीत मुस्कुराना सिखाते हैं तो कुछ दिल को हल्का कर जाते हैं। तो आइए इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला मधुर गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म है आर पार, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कुछ और नगमे पुरानी फिल्मों से।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। दोस्तों, संगीत वो एहसास है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। पुरानी फिल्में गीतों की मिठास आज भी वैसी ही है जैसे बरसों पहले थी। अब सुनते हैं एक और सदाबहार नगमा छाया फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की। राजेंद्र किशन के बोल है सलील चौधरी का संगीत।

पुराने दौर की सादगी और मिठास आज भी हर दिल को पसंद आती है। दोस्तों लीजिए सुनिए एक और यादगार नगमा बसंत बहार फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और लता मंगेशकर की। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: और बाकी के गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। रेडियो और पुराने गीतों का रिश्ता कितना खास है दोस्तों, बरसों बीत जाते हैं लेकिन ये धुनें कभी पुरानी नहीं पड़ती। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। फिल्म है ताजमहल, साहिल धनवी के बोल, रोशन का संगीत।

पुराने गीतों की बात ही अलग होती है दोस्तों, इनमें सादगी भी है, अपनापन भी और ढेर सारी यादें भी। पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत कन कन में भगवान फिल्म से, आवाज सुमन कल्याणपुरी की। भरत व्यास के बोल है शिवराम का संगीत।

तो दोस्तों, पुरानी फिल्मी गीतों से सजी आज की ये महफिल यहीं पर समाप्त होती है। आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं पहाड़ी संगीत।

हिमालय की वादियों से उठती मधुर धुनों और लोक संस्कृति की मीठी खुशबू के साथ स्वागत है आपका कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में। आपको सुनवाएंगे पहाड़ों की मिट्टी से जुड़े कुछ खूबसूरत लोकगीत और संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज़ में।

लोकगीतों की मिठास सीधे दिल में उतर जाती है। इनमें पहाड़ों की सादगी भी है और रिश्तों की गर्माहट भी। तो आइए अब सुनते हैं खूबसूरत पहाड़ी लोकगीत रविंद्र वर्मा की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम के बाकी के लोक गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। पहाड़ी लोकगीत हमारे लोक जीवन का आईना है। इनमें खुशियां भी है, त्योहारों की रौनक भी और प्रकृति का सुंदर एहसास भी। अगला मधुर लोकगीत आपको सुनवाते हैं मंजू भारद्वाज की आवाज़ में।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: पहाड़ी संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। इन लोकगीतों में अपनी संस्कृति और परंपराओं की आत्मा बसती है। लोक रंगों से सजा ये लोकगीत आपको सुनवाते हैं किशन वर्मा की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत आकाशवाणी FM शिमला से 103.7 MHz पर। पहाड़ी गीतों का अपना ही अलग जादू होता है, जितना सुनिए उतना ही मन इनके करीब चला जाता है। लीजिए अब सुनिए ये मधुर लोकगीत बबली की आवाज़ में।

पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। दोस्तों अब आपको सुनवाते हैं दबंग फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की। जलील शेरवानी के बोल हैं साजिद वाजिद का संगीत।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन। आज के हम सफर में आशा ठाकुर
1: और मैं कौशल्या, आप सभी को हमारा
0: नमस्कार। देखिए बहनों, ये जो जीवन है ये एक आईना है, इसमें वही सब नजर आता है जो हमारे अंदर होता है, हमारे भीतर होता है। जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही हमारी जो छवि है वो सबको नजर आएगी।
1: बिल्कुल।
0: और जिंदगी की जो असली ताकत है बहनों, वो कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर फिर से खड़े हो जाने में है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि ये जिंदगी सुख दुख आशा निराशा उतार चढ़ावों से भरी है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति का सामना हौसले और हिम्मत के साथ करता है
1: जी,
0: उसे सफलता जरूर मिलती है।
1: बिल्कुल आशा जी, आपने देखिए बहुत अच्छी बात कही है, हौसले अगर बुलंद हो ना तो मंजिल आसान हो ही जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर हमारे भीतर होता है ना तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता।
0: बिल्कुल जी, जब हम देखिए कौशल्या चलते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो गिरते भी हैं
1: बिल्कुल,
0: फिर उठते हैं
1: जी,
0: और जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती चली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कुछ लोग होते हैं कौशल्या जिंदगी में, जो अगर जीवन में छोटी सी भी परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो उससे वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हार मान लेते हैं
1: जी।
0: और वहीं कुछ लोग होते हैं जो उस मुश्किल का, उस समस्या का सामना बहुत ही मजबूती से करते हैं और डट जाते हैं।
1: बिल्कुल। देखिए आशा, बहुत सही कहा आपने, मुश्किलों का आना जिंदगी का देखिए बहनों एक हिस्सा होता है ना, और उसमें हंसकर अगर हम उससे बाहर निकल जाते हैं, एक जो ये एक जीवन की जीने की कला है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह बहनों मेहनत जो है वो हमारे हुनर को निखारती है, उसी तरह जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं या जो मुश्किलें होती हैं वो भी हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए ना बहनों, जब हम इन मुश्किलों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे हौसले और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, है ना।
0: बिल्कुल। और देखिए बहनों, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ होते हुए भी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ऐसे में हमें तय करना होता है कि हम अपनी जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं,
1: और हमारा वही नज़रिया जो है समस्याओं परेशानियों को सुलझा भी सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और उलझा भी सकता है, है ना। हमारी बहनें जानती हैं आजकल की भाग दौड़ भरी जीवन शैली जो है वो हमें हर रोज़ कोई बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए उकसाती है, है ना। और ये सभी निर्णय हमारे मन मस्तिष्क पर ही प्रभाव डालते हैं ना।
0: बिल्कुल। तो जब ऐसा कभी ऐसी स्थिति आती है कौशल्या, तो ऐसे में कभी कभी जो है हमें मानसिक थकान भी होने लग जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और आजकल का जो ये डिजिटल युग है, इसमें हमारे पास हर चीज के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं।
1: बिल्कुल।
0: फिर चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, करियर की बात हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इतने ज्यादा जब विकल्प हमारे सामने मौजूद होते हैं तो उनमें कभी कभी उलझन की स्थिति भी आ जाती है।
1: बिल्कुल। देखिए ना, इसलिए इस उलझन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दैनिक कार्यकलापों की एक योजना बनाएं और अपनी प्राथमिकताएं जो है वो तय करें। और जब हम अपने समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं का सही प्रबंधन करते हैं ना आशा, तो बेहतर निर्णय जो है वो हम ले सकते हैं।
0: बिल्कुल बहनों। और जिंदगी में कभी क्या होता है कि एक और एक जो है वो मिलकर दो होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कभी एक और एक ग्यारह हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं बहनों कि जिंदगी जो है वो एक पहेली है।
1: बिल्कुल।
0: और इस पहेली को सुलझाने में कई बार जो अच्छे विचार होते हैं कौशल्या, वो हमारी बहुत मदद करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनी परेशानियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आता, है ना। तो ऐसी स्थिति में प्रेरणादायक सकारात्मक विचार ही हमें सही राह दिखाते हैं।
0: बिल्कुल। और उम्मीद की जो एक छोटी सी किरण होती है वो बड़े से बड़े अंधकार को दूर कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो बहनों, अगर हम अपने जीवन में इन विचारों को शामिल करते हैं तो जिंदगी आसान लगने लगती है और हम हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठा पाते हैं, और यही जीवन जीने का मूल मंत्र भी है।
1: बिल्कुल। देखिए ना, बातों का सिलसिला तो आशा हमारा जारी ही रहता है, क्यों ना बहनों को एक गीत सुनवा दिया जाए और खुद भी सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल, हम भी गीत

0: बहनों, अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के बारे में। देखिए बहनों, इस कार्यक्रम के तहत काफ़ी सारे जो योजनाएं आती हैं है
1: जी,
0: और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं आती हैं उनके अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करेंगे एकीकृत बाल विकास योजनाओं की समुचित उपलब्धता जो है वो भी इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, और विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना भी इसी योजना के अंतर्गत आता है।
1: साथ ही उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन जुटाना,
0: बिल्कुल,
1: मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण करना,
0: बिल्कुल,
1: और अल्पसंख्यक समुदाय के जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए ना आशा, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना भी इसके अंतर्गत आता है, और गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना भी इसी के अंतर्गत आती है
1: जी। और साथ ही तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन करना, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित जो ऋण सहायता है वो प्रदान करना, साथ ही राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती करना,
0: बिल्कुल, और देखिए ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी जो है वो इस तरह की योजना भी इसके अंतर्गत ही आती है, और अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में

0: आधार भी इसी के अंतर्गत आता है।
1: और इसी कार्यक्रम में जो है एक और कड़ी जुड़ती है, वो है सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम करना।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास करना।
0: जी हाँ, अब देखिए बहनों, इसमें इतनी सारी योजनाएं तो आती हैं, पर हम इसमें आज एक ही योजना के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। वो है एकीकृत बाल विकास योजनाओं की समुचित उपलब्धता।
1: जी, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का जो उद्देश्य है वो है उपेक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका संपूर्ण विकास करना।
0: बिल्कुल। और इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे पोषण, स्वास्थ्य जांच करना, प्रतिकरण करना, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी इसी योजना के अंतर्गत आता है।
1: जी, साथ ही ICDS
0: जी
1: जो प्रोजेक्ट है और आंगनवाड़ी जो केंद्र है उस पर निश्चित संख्या में अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गांव प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे, ताकि इस जो योजना का लाभ है वो ऐसे समुदायों को उचित रूप से मिल सके।
0: जी हाँ, तो देखिए आशा, ये तो प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास योजनाओं की समुचित उपलब्धता के बारे में बातचीत हुई
1: जी।
0: तो क्यों ना अब एक और गीत सुन लिया जाए।
1: जी कौशल्या, मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ रही थी कि अब बारी है एक गीत की, तो पहले एक गीत सुनते फिर बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
0: बिल्कुल।

0: बहनों आइए बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। बहनों ये योजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य जो है छतों पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसके तहत बहनों लाभार्थियों को पैनल की लागत का 40 से 60% तक की जो भारी सरकारी सब्सिडी जो है वो सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है।
1: और साथ ही इस योजना की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, सब्सिडी है और आवेदन प्रक्रिया है, उसके बारे में भी कुशलता अपनी सखियों से चर्चा करते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए योजना के मुख्य लाभ की पहले हम बात करेंगे। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी है ना इसमें, और सोलर पैनल लगाने से लेकर आपके घर तक जो बिजली का बिल जो है वो शून्य हो जाएगा। तो देखिए ना आशा कितनी अच्छी योजना है, अगर आपका बिजली का बिल नहीं आता है ना तो कितनी अच्छी बात है ना?
1: आप बिजली की बचत भी कर रही हैं, अपना बिल भी घटा रहे हैं, साथ ही साथ
0: वातावरण पर्यावरण का भी ख्याल रख रही हैं।
1: और साथ ही साथ कुशल्या इसमें एक और बात है कि हम जो

0: तो समाज के निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण में, उसकी उन्नति में भी
1: भागीदार,
0: कहीं ना कहीं भागीदार बन रहे हैं।
1: बिल्कुल। और अतिरिक्त आय की बात करें आशा, तो अगर आपके पैनल द्वारा बनाई गई बिजली जो है आपकी खपत से अधिक होती है तो आप बची हुई बिजली ग्रिड को बेच भी सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि कमाई का जरिया भी है ये।
0: बिल्कुल, और साथ ही पर्यावरण जो संरक्षण है जैसे आप अभी कह रहे थे, तो उसकी अगर हम बात करें बहनों, तो सौर ऊर्जा के उपयोग से जो है वो कार्बन उत्सर्जन में भी जो है वो कमी आती है।
1: बिल्कुल। और देखिए बहनों, सब्सिडी का अगर हम बात करें तो सब्सिडी की राशि आपके द्वारा लगवाए जाने पर ना सोलर पैनल, जो सोलर प्लांट की क्षमता जो है वो आप पर ही निर्भर करती है ना
0: जी, उस पर निर्भर कर देगा कि वो आपकी कितनी है
1: ना? जी। और अगर बहनों हम लोन प्रक्रिया की बात करें तो यदि आपको सोलर पैनल लगवाने के लिए लोन की आवश्यकता होती है तो आपको बिना किसी गारंटी के 2 लाख तक का आसान लोन भी प्रदान किया जाता है। देखिए ना कितनी अच्छी बात है ना।
0: बिल्कुल, अगर कोई इस विषय में कौशल्य सोच रहे हैं कि हमें जो है लोन लेना है, तो ऋण के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, उसकी जो एक प्रक्रिया होती है उसके विषय में भी अपनी सखियों से हम बात करेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है और पारदर्शी है।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बाद बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बहनों आपको जो इनकी आधिकारिक वेबसाइट है PM सूर्य घर नेशनल पोर्टल पर आपको जाना है और अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल जो है वो वेरीफाई करके आप रजिस्टर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए जब बहनों आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आवेदन आप कैसे करेंगे, इसमें जाके आप इस पोर्टल पे जाइए, है ना, PM सूर्य घर नेशनल पोर्टल है, और इस पर लॉगिन करें और अपनी बिजली विवरण, कंपनी और उपभोक्ता संख्या की जानकारी देकर जो है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
0: साथ ही पैनल लगवाने के लिए जो है सरकार द्वारा अधिकृत कुछ वेंडर्स होते हैं, उनकी सूची में से आप जो है अपना पसंदीदा वेंडर चुन सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसके लिए वेंडर द्वारा आपको घर की छत पर सोलर पैनल और एक नेट मीटर लगा दिया जाएगा, है ना, और फिर सब्सिडी जब आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपको 30 से 45 दिनों के अंदर जो है सब्सिडी की राशि जो है सीधे आपके बैंक खाता में जमा करवा दी जाएगी। तो देखिए ना 40 से 45 दिन में जो है आपके घर में जो है ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है आप इसका लाभ उठा सकती हैं। बहनों अगर आप हमारी बहनें हैं ना
0: जी,
1: चाहती हैं अगर इस तरह की योजना, ज़रूर इसका लाभ ज़रूर उठाएं आप, क्योंकि देखिए ना हम चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते हैं आशा घर पे, है ना, हम कई बार को कितने परेशान हो जाते हैं ना, तो अगर हम अपना थोड़ा सा योगदान दें वातावरण के लिए भी, अपने लिए भी सुकून है और वातावरण भी हमारा स्वच्छ रहेगा अगर हम इस योजना का लाभ उठाते हैं,
0: और राष्ट्र निर्माण में भी हम भागीदार बनेंगे।
1: बिल्कुल बनेंगे जी।
0: तो अब आगे बढ़ने से पहले कौशल्या गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल।

0: देखिए बहनों, रिश्ते जो होते हैं ना, कोई भी रिश्ता हो, वो चंदन की तरह होते हैं जो टूटकर भी कभी अपनी खुशबू नहीं छोड़ते। क्योंकि सच्चे जो रिश्ते होते हैं वो आकार से नहीं बल्कि स्वभाव से पहचाने जाते हैं। उनमें अहंकार नहीं होता, बस होता है तो अपनापन। और कौशल्या, यही अपनापन जो है हमारे और सखियों के रिश्ते में भी है।
1: बिल्कुल है। देखिए ना, हमारी जो बहनें हैं, हम रूबरू होते हैं रोज उनसे, है ना
0: जी।
1: हर कोई ना कोई अच्छे से अच्छे जो है हमारे विचार लेकर हम उनसे रूबरू होते हैं, और हमारी बहनें हमारे साथ दिल से जुड़ी हुई हैं, है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और काम के बावजूद भी हमारा जो कार्यक्रम है वो इतनी शिद्दत से सुनती हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि ये एक अपनेपन का जो एहसास होता है ना, ये एहसास का रिश्ता है।
1: जी, यानी कि जीवन जीने का, देखिए ना बहनों, यही तो मज़ा है ना। सही ढंग क्या होना चाहिए, हम ये चाहते हैं ना, देखिए आशा, कि हम जीवन को किस तरह से सही तरह से जिए। हर काम देखिए बहनें हमारी समय पर करना चाहती हैं, समय से घर लौटना है, परिवार के साथ समय बिताना, देखिए ये सारे काम होते ही रहते हैं, है ना आशा।
0: बिल्कुल।
1: खुद के लिए वक्त निकालना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
0: तो बहनों, आज के दौर में ऐसा जो जीवन जीना वास्तव में थोड़ा सा कठिन

0: जरूर लगता है या
1: जी
0: हो सकता है, क्योंकि भागदौड़ भरी आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है इस दुनिया में, हर व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबके पास अपनी इच्छाएं हैं, उनके बीच में हम उलझे हुए हैं। और
1: बिल्कुल
0: ख़ासकर बात करें तो अगर महिलाओं की, तो वो इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं।
1: बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि देखिए ना, महिलाओं से ही अपेक्षा की जाती है आशा
0: जी
1: कि वे एक सफल पेशेवर बने भी बने और एक आदर्श माँ भी बने, एक जिम्मेदार बेटी भी और बहू भी बने, और साथ में एक समझदार पत्नी भी साबित हो। तो देखिए ना, एक महिला को कितनी जिम्मेदारी है आशा।
0: यानी इतने सारे जो किरदार हैं वो एक साथ निभाने हैं,
1: बिल्कुल
0: और इसमें कोई दो राय नहीं है कौशल्या के,
1: जी
0: हमारी जो सखियां हैं, हमारी जो गृहिणियां हैं या महिला की हम बात करते हैं,
1: बिल्कुल
0: कि वो इन सब किरदारों में खरी उतरती हैं।
1: हाँ, अव्वल आती हैं आशा, है
0: जी
1: ना। पर जब बातों में हम ये बात करते हैं कि उनका जो संतुलन है ना, कई बार बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है? ये रिश्ता होता है एक मैं और हम का रिश्ता। देखिए, जैसे कई बार कहते हैं कहीं कि मैं ये करती हूँ,
0: जी
1: जहाँ ये बात आती है वहाँ पर संतुलन बिगड़ता है। जहाँ हम की बात आती है, हम करते हैं, रिश्ता निभाते हैं,
0: जी
1: या हम ये काम करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ रिश्ता प्यार का जो है
0: बन जाता है,
1: बरकरार रहता
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है
0: बन
1: ना।
0: जाता है। तो जो ये मैं होता है ना, इसके साथ अगर हम थोड़ा सा हम को भी जोड़ दें
1: बिल्कुल,
0: तो वो रिश्ते की कुछ बात ही और हो जाती है, और
1: मिठास आ
0: रिश्ता
1: जाती है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: मिठास आ जाती है, और रिश्ता बड़ा बन जाता है।
1: और देखिए ना, जैसे कि हमें अपने लिए समय देना है ना, अपना जो भी काम करना है, पूरे परिवार को हम समय देती हैं, है ना।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हम जब पूरे परिवार को समय देती हैं, जब हम स्वस्थ हैं ना आशा, तभी हम
0: जी
1: पूरे परिवार को समय दे सकती हैं ना।
0: बिल्कुल
1: इसलिए बहनों, सबसे पहले हम तो यही कहेंगे, आप अपना अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखें, और जिम्मेदारियां जो है वो, जब तक हमारी जिंदगी है आशा, हमारी बहनों की जिम्मेदारी कभी भी खत्म नहीं होती है। आप
0: बिल्कुल
1: जानती हैं ना, सुबह स्कूल के टाइम से लेके शाम को सोने तक उनको जो है क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है।
0: बिल्कुल
1: चाहे वो घर की हो, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे कहीं भी बाहर जाना है, रिश्तेदारी में जाना है ना, तो हर जगह हमारी बहनें अपनी रिश्तेदारी बड़ी बखूबी से निभाती हैं।
0: बिल्कुल और इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे निकल गया, समय
1: बिल्कुल
0: कैसे गुजर गया।
1: जी
0: इसलिए बहनों, जीवन में जो संतुलन बनाकर हमें चलना है, तभी हम जो है खुद भी खुश रह पाती हैं, अपने परिवार को भी खुश और स्वस्थ रख सकती हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए ना बहनों, संतुलन का अर्थ ही यही होता है, जीवन के हर पहलू को हम मध्यम वर्ग अपनाना होगा, यानी कि हमें
0: एक बीच का
1: एक,
0: रास्ता,
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: बीच का रास्ता अपनाना होगा, ताकि हमारे जीवन में संतुलन जो है वो बना रहे। चाहे वो भौतिक संतुलन हो, चाहे आध्यात्मिक संतुलन हो, चाहे कोई भी संतुलन हो, है ना।
0: जी
1: भावनाओं का, जो हमारे मन के अंदर भावनाएं हैं, उनका संतुलन होना भी ज़रूरी होता है। उसमें भी देखिए बहनों, मैं और हम का जो रिश्ता है वो नहीं आना चाहिए, यानी कि सिर्फ हम का रिश्ता आना चाहिए, मैं का नहीं, रिश्ता नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं क्या होता है आशा, अहंकार
0: बिल्कुल,
1: हो जाता है ना,
0: थोड़ा सा
1: कि मैं
0: अहम
1: ये करती
0: भावना।
1: हूँ, है ना। अहम भाव को हमारी बहनों को छोड़ना होगा, हमको अपनाना होगा, यानी कि हम सब जो हैं ये मिलके ये कार्य करते हैं।
0: बिल्कुल, तो ऐसे में हम जो है सबके बीच में संतुलन बना सकते हैं, क्योंकि अगर जो है हम केवल एक ही दिशा में ज्यादा झुक जाते हैं, केवल
1: बिल्कुल,
0: एक दिशा की ओर ही चलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं असंतुलन
1: असंतुलन हो
0: पैदा हो
1: जाता है।
0: जाता है।
1: हाँ बिल्कुल। तो देखिए ना बहनों, हम यही चाहते हैं कि हमारी बहनें जो हैं वो स्वस्थ रहें, और अपने जीवन को संतुलन जो है, अपने जीवन का संतुलन बना के रखें। किसी भी कसौटी पर, हम जानते हैं कि हमारी बहनें हर कसौटी पर खरा ही उतरती हैं।
0: जी और उतरेंगी भी,
1: बिल्कुल
0: क्यों नहीं उतरेंगी, इतनी सकुशल हैं और इतनी जो है उनमें क्षमता है। केवल जो ज़रूरत होती है बहनों, वो होती है कि अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा पहचानने की।
1: बिल्कुल
0: तो आप किसी भी क्षेत्र में आप जो है वो पीछे नहीं रहेंगी, हमेशा अपना और अपने परिवार का जो है इसी तरह ख्याल रखिए, इसी तरह स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।
1: बिल्कुल। इसलिए तो देखियो बहनों, हम कहते हैं ना, जीवन में संतुलन बनाकर चलें, तभी आप खुद खुश रहेंगी और अपने परिवार को भी जो है वो खुश रख सकेंगी।
0: बिल्कुल, तो ये पल तो यूं ही गुजरते चले जाएंगे, और अब चलते चलते क्यों ना एक गीत और सुन लिया जाए।
1: जी हाँ।

0: बहनों देखिए, आपके साथ बातचीत करते करते समय का आशा पता ही नहीं चला कि हमारा समय जो है कार्यक्रम का कब संपन्न हो चल रहा है।
1: जी बिल्कुल, ऐसा रिश्ता है हमारा और सखियों का।
0: बिल्कुल, देखिए ना बहनों, डाली से टूटा हुआ फूल फिर से उस पर नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो दूसरा फूल दोबारा लग सकता है।
1: बिल्कुल, तो इसी तरह बहनों, खोए हुए जो पल होते हैं या बीते हुए जो पल होते हैं वो तो लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, आने वाले पल को हम अपना जो है बेहतरीन जरूर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इसी विचार के साथ अब कार्यक्रम का समय भी हो चला है। अपनी सखियों को आज का कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। एक बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला। दोपहर के 1:10 हो चुके हैं। ये वक्त है आपके फेवरेट लाइव फोन प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो शिमला। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कुछ चुनिंदा मूवीज़ के नाम और इन्हीं मूवीज़ के गीतों पर आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद के गीत। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको बता देते हैं कि आज हम प्रोग्राम में कौन कौन सी मूवीज़ को लेकर आए हैं। हमारी आज की मूवीज़ हैं सोल्जर, चलते चलते, दीवाना, ओम शांति ओम, कच्चे धागे, हमराज। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। सोल्जर, चलते चलते, दीवाना, ओम शांति ओम, कच्चे धागे, हमराज। आप अपनी फरमाइश बताने के लिए डायल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स 2808034 और 2970400। शिमला का एसटीडी कोड है 0177। तो दोस्तों जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद का गीत हमारी बताई गई फिल्मों में से। जब तक आपकी फरमाइश हमारे तक पहुंचती है, आप हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं हमारी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो शिमला, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। तो हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी, प्रभु की कृपा है। आप कैसे हैं
0: जी? बहुत बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा है हम पे भी। और ये बताइए कि वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है यहाँ पे
0: जी,
1: कितनी गर्मी है और बहुत ही ज़्यादा गर्म।
0: ओके, तो आज आपने कार्यक्रम में कॉल की है, कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: वैसे शिमला में तो मौसम ठंडा होगा
0: जी, बारिश है पर गर्मी भी है, जब धूप लगती है तो गर्मी हो जाती है और बारिश होती है तो ठंड।
1: तो शिमला में कॉल लग गई तो यहाँ तक ठंडक पहुँच गई हमारे।
0: जी, तो आपने कॉल किया है कार्यक्रम में, कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: ये फिल्म में हमराज का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: ठीक है जी, तो आप सुनिए अपनी पसंद का हमराज फिल्म का ये गीत अपने रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: गर्मी हो जाती है और बारिश होती है तो
1: हाँ जी,
0: ठंड।
1: मतलब शिमला शिमला में कोहल लग गई तो यहाँ तक ठंडक पहुंच गई हमारे यहाँ।
0: हाँ जी, तो आपने कॉल किया है कार्यक्रम में, कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: ये फिल्म में हमराज का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: ठीक है जी, तो आप सुनिए अपनी पसंद का हमराज फिल्म का ये गीत अपने रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में अब हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: जी ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया है। हमारे इधर बारिश अच्छी हो रही है, करीबन एक घंटा हो गया बारिश अच्छी, पानी अच्छा पानी गिरा हमारे इधर दीदी।
0: अच्छा अच्छा तो बारिश से जो गर्मियाँ जो हुई है उसमें थोड़ी राहत मिली होगी आपको?
1: जी दीदी, हमारे इधर तो करीबन 20 दिन से राहत मिल चुकी है, क्योंकि हमारे गांव में दीदी 20 दिन से पानी गिर रहा है, और 5-7 दिन पहले तो हमारे इधर सोयाबीन मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी।
0: अच्छा, तब तो फिर ये बारिश जो है फसलों के लिए काफी लाभदायक है।
1: जी हाँ दीदी, मक्का सोयाबीन सब उगी आई है, वो जमीन से ऊपर आ गई है थोड़ी।
0: अच्छा अच्छा तो यानी आप किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं?
1: जी हाँ दीदी, खेती बाड़ी करते हैं, किसान ही हैं।
0: अच्छा जी, तो और आपके गांव में जो है जो बारिश हुई है
1: जी
0: उससे जो ये खेती में जो आपको मतलब ये फायदेमंद है, तो आप ये बताइए कि और इस बारिश के क्या क्या फायदे हैं?
1: दीदी, बारिश के तो बहुत फायदे हैं, क्योंकि जमीन में पानी हमारे इधर स्टॉक इसी से होता है, जब जमीन के अंदर पानी जाएगा तो दीदी हम आगे की फसल ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाते। हमारे इधर तालाब नहीं है बड़े बड़े दीदी, तो पानी तालाबों से नहीं फिरता हमारे इधर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो यानी आप इस पानी को स्टोर करके रखते
1: हैं? हमारे गांव में नहीं है।
0: अच्छा जी, तो पानी को स्टोर करने की व्यवस्था बनाए कर रखी है आप लोगों ने?
1: जी हाँ दीदी, हमारे इधर नदी नाले हैं, तो उसमें जब उफान पे आते हैं तो पानी वैसे ही जमीन के अंदर जाता है, और हमारे यहाँ दीदी 60 फीट मिट्टी है, तो पानी जमीन के अंदर ही जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है जी, तो आज आपने कार्यक्रम में कॉल की है, कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है दीवाना और गाने के बोले पायलिया।
0: ठीक है जी, कार्यक्रम में कॉल।
1: दीदी हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता के सभी सदस्यों को डेलीकेट रहेगा दीदी।
0: जी बिल्कुल जी, तो कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो सुनिए आप और अपने दोस्तों के साथ अपनी पसंद का दीवाना फिल्म का ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी।

0: अच्छा, ठीक है जी। तो आज आपने कार्यक्रम में कॉल की है, कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है दीवाना और गाने के बोले पायलिया।
0: ठीक है जी, कार्यक्रम में
1: और
0: कॉल
1: दीदी हमारे हेलो फरमाइश।

0: एकता रेडियो श्रोता कुल के सभी सदस्यों को डेलीकेट रहेगा दीदी।
1: जी बिल्कुल जी, तो कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो सुनिए आप और अपने दोस्तों के साथ अपनी पसंद का दीवाना फिल्म का ये गीत।
0: धन्यवाद दीदी।

0: अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो शिमला। प्रोग्राम में हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो,
4: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई गुंडा से।
3: कोटखाई से बात कर रहे हैं राकेश जी, कैसे हैं आप?
4: जी बहुत बढ़िया है, इस वक्त जो है FM शिमला प्रोग्राम सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है।
3: अच्छा जी, तो मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है वहाँ पे?
4: बादल छाए हैं और बारिश हुई थी और अभी जो है बादल छाए हुए हैं और हो सकता है कि थोड़ी 2-3 घंटे के बाद बारिश आ जाए।
3: अच्छा जी, तो ये बारिश जो है अभी आएगी वो आपके जो फसल है, यानी आप सेब के व्यापारी हैं, तो कैसी सही रहेगी ये बारिश की, नुकसान करेगी फसल को?
4: नहीं, इस बार सही रहेगी क्योंकि जब अगर बारिश आएगी तो सेब में जो कलर होते हैं तो वो तभी तो आएंगे ना, अभी तो बढ़िया रहेगी इसके लिए, तभी बढ़िया बारिश रहेगी। हाँ, अगर ओलावृष्टि आती है तो नुकसान करेगी।
3: जी जी जी, तो आज आपने कार्यक्रम में कॉल की है, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
4: जी ओम शांति ओम का गाना सुनना है।
3: जी, तो कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो आपको सुनवाते हैं ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत।
4: जी जी, धन्यवाद।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
3: आप है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ और इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो शिमला। आइए, हमारे कॉलर हमारे से जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कौन है वो? हेलो हेलो
4: हेलो
3: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो
4: हेलो जी, हेलो जी, नमस्ते।
3: नमस्ते जी, कार्यक्रम में स्वागत, कौन बात कर रहे हैं?
4: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
3: उज्जैन से आप बात कर

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष

0: निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना

0: से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है, ये सेलिब्रेट

0: जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर

0: हैं, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ₹103.7 MHz पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसे लेकर मैं हाजिर हूँ दिशा। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने अपने खेल के मैदान में एक महारत हासिल की होती है। आज भी हम एक ऐसे ही खिलाड़ी से बातचीत करने वाले हैं जिनका नाम है सुभाष चंद्र, और ये ताइक्वांडो के राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ इस समय ताइक्वांडो के कोच भी हैं। सुभाष चंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर आपका बचपन

0: बीता है, और अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में आप क्या करते हैं?
1: मेरा नाम सुभाष चंद है। मैं बेसिकली देहावलसन का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन देहावलसन में ही बीता है, क्योंकि गांव के रहने वाले हैं। तो गांव की स्कूलिंग, मेरी सेकेंडरी स्कूल मेरा देहा से हुआ है और मैंने मार्शल आर्ट देहा स्कूल से ही शुरू किया था। सन 2000 से शुरू किया था मैंने ताइक्वांडो। प्लस टू के बाद मैं कॉलेज के लिए शिमला आया और मैंने अपना ताइक्वांडो गेम जो है जारी रखा। इस दौरान मैंने काफ़ी स्टेट्स खेले हैं 2000 से लेकर।
0: देखिए सर, जैसा भी हमने आपके परिचय में बताया है कि आप ताइक्वांडो के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो ताइक्वांडो की एक अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें, क्योंकि ये जो गेम है ये काफी नई है हिमाचल में, क्योंकि पहले देखिए जूडो खेला जाता था, कराटे खेला जाता था, फिर ये ताइक्वांडो गेम आई, तो एक अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन जानना चाहें तो ये ताइक्वांडो आखिर है क्या?
1: देखिए मैडम, ये ताइक्वांडो मुख्य रूप से कोरिया की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसे हाथ और पैर से लड़ने की कला कहा जाता है। ये 2000 साल पहले से भी पुरानी कला है। आधुनिक स्वरूप 1945 के बाद इसको जो मिला है, लेकिन भारत में ताइक्वांडो की शुरुआत जिमी आर जिक्त्यानी सर ने की है, जो कि सन 1976 में की है। मुख्य रूप से ताइक्वांडो का अर्थ है ताइक्वांडो, ये तीन भागों में विभाजित किया गया है। ताई का अर्थ है पैर या पैर से प्रहार करना, क्वान हाथ या मुक्का मारना, डो का मतलब है अनुशासन या जीवन का तरीका।
0: अगर हम आपकी बात करें सर, देखिए ये अभी आपने हमें बताया कि ताइक्वांडो की हिस्ट्री क्या रही है और कब से भारत में प्रचलन में आया, और लेकिन आपकी अगर हम बात करें, आपने कब से ताइक्वांडो खेलना शुरू किया?
1: मैंने सन 2000 से स्कूल में ही ताइक्वांडो शुरू कर दिया था खेलना। मेरे बेसिक कोच वीरेंद्र जी रहे हैं, जो कि मार्शल आर्ट में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैं कॉलेज आया तो कॉलेज के बाद मैंने ताइक्वांडो छोड़ दिया था। उसके
0: जी
1: बाद मेरा चयन हिमाचल प्रदेश पुलिस में हो गया था। उसके उपरांत मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैंने ताइक्वांडो सन 2017 से फिर से ग्रैंड मास्टर विनोद के साथ, जो विनोद जी है ग्रैंड मास्टर हैं,
0: जी
1: हिमाचल के ताइक्वांडो के फाउंडर भी हैं, उनके साथ फिर से मैंने शुरू किया 2017 से। फिर 17 से कंटिन्यू मैं करता आ रहा हूँ ताइक्वांडो। इस दौरान मैंने कई नेशनल्स और पुलिस टीम से मैंने प्रतिनिधित्व किया है टीम का, और ऑल इंडिया पुलिस टीम से मैं खेला हूँ। उसके उपरांत मैंने सन 2023 में 23-24 में मैंने ताइक्वांडो स्पोर्ट्स में NIS सर्टिफिकेट कोर्स किया है बेंगलोर से।
0: जी देखिए आपने भी हमें अपने कोच के बारे में बताया है जिनके अंडर आपने सीखा है, और वो चाहे शुरुआती दौर के कोच रहे हों या फिर जब आपने, एक होता है ना, एक एज आती है हम सोचते हैं कि हमें अब सीरियसली खेलना और एक करियर इसमें सेट करना है अपना, तो इसमें जो आपने थोड़ी अचीवमेंट्स हमें बताई, थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे सर, शुरुआत से लेकर जो जो आपकी अचीवमेंट्स रही हैं।
1: शुरुआत में मैंने सन 2003 में मेरा पहला मेडल आया है, वो डिस्ट्रिक्ट से आया था। उसके बाद मैंने स्टेट खेला, फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू मैं ताइक्वांडो गेम से जुड़ा रहा, जिसमें मेरे मेडल्स हर इवेंट में आते रहे। मेरे मेडल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में मेरे मेडल आते रहे। उसके उपरांत 2006 के बाद मैंने गेम छोड़ दी थी। जब मैंने 2017 में फिर से शुरू किया तो मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल है। फिर उसके बाद मेरा नेशनल टीम में चयन हुआ। फिर नेशनल टीम में मैंने जबलपुर में नेशनल खेला। उसके उपरांत पुलिस टीम में मैंने धर्मशाला में 2022 में खेला, तो वहाँ मेरा गोल्ड मेडल है। उसके मतलब हर इवेंट मैंने कभी उसके बाद कोई इवेंट नहीं छोड़ा है। जितने भी फाइट्स हुए मैं फाइट लड़ता रहा।
0: कुछ भी करते हैं ना लाइफ में, वो चाहे स्पोर्ट्स है या करियर के लिए कुछ भी हम सोचते हैं, एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं वो लोग। तो जैसा आपने कहा, आपने पहले स्कूल टाइम में स्टार्ट कर दिया था, तो किसी वजह से आपने छोड़ा, फिर आपने 2017 में दोबारा स्टार्ट किया, तो जो एक स्टार्टिंग थी आपकी, उस समय आपके घर वालों की कैसी प्रतिक्रिया थी? क्योंकि ये जो खेल है ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि इसमें चोट भी लग जाती है, तो घर वाले कहीं ना कहीं एक डर में रहते हैं कि हमारे बच्चों को चोट ना लग जाए, कैसा एक सपोर्ट था उनका?
1: देखिए जिस टाइम मैंने शुरू किया था तो मेरे घर वालों को इस गेम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, ना ही उनको पता था। लेकिन मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि ठीक है बेटा खेलो आप, क्योंकि मैं बचपन से ही खेलकूद में बहुत ही अव्वल रहा हूँ और स्कूल गेम्स जितनी भी है मैंने हर गेम में पार्टिसिपेट किया है। तो उन्हें लगता था कि शायद ये भी कोई नॉर्मल गेम होगी,
0: जी
1: लेकिन जब उन्होंने बाद बाद में पता चला तो वो फिर थोड़ा सा फिर रोक टोक उन्होंने कुछ नहीं किया, पर काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका मेरे लिए।
0: देखिए सर, ये तो हम आपसे बात कर रहे हैं अभी ताइक्वांडो के बारे में, और आगे और भी अभी बातचीत जारी रखेंगे, इससे पहले क्यों ना हम एक गीत सुन लें, और हम जानना चाहेंगे आप गीत सुनते हैं,
1: बिल्कुल मैम, हम बिल्कुल म्यूजिक के बहुत प्रेमी हैं।
0: आपके कोई पसंदीदा गायक या गायिका जिनके गीत आप ज्यादातर सुनना पसंद करते हैं?
1: मैं ज्यादातर कुमार सानू के गीत सुनना पसंद करता हूँ।
0: जी, तो आप कुमार सानू के गीत सुनना ज्यादा पसंद

0: ईयर में आते हैं, फिर आप कॉलेज से खेलते हो, इंटर यूनिवर्सिटी जाते हैं आप, तो इंटर यूनिवर्सिटी आपको पूरा खर्चा जो है गवर्नमेंट देती है।
1: जी
0: एसोसिएशन जो एफिलेटेड एसोसिएशन है वो अच्छे खिलाड़ी को हर वक्त आगे ले जाती है, वो कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने देती है प्लेयर को, वो हर हाल उसे खिलाती है, वो चाहे उनको जेब से करना पड़े या फिर गवर्नमेंट से करना पड़े, वो प्लेयर को बनाती ही बनाती है।
1: बिल्कुल, ज़रूरत है तो बच्चों के मेहनत करने की ज़रूरत है सर। हम बच्चों को ये बताना चाहें सर आपके ज़रिए, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों का एक एक्सक्यूज़ बन जाता है दिमाग में कहीं ना कहीं कि नहीं हमें पढ़ने को है, हमारे पास खेलने का टाइम नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस तो देखिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना है। तो आपने भी अपने समय में कैसे मैनेज किया था, क्योंकि पढ़ाई भी करनी थी और गेम्स भी खेलनी थी, तो कैसे मैनेज किया है ताकि जो आपको युवा पीढ़ी समय सुनेगी ना उनको भी लगे कि हाँ हम भी इस तरह से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को।
0: देखिए मैम, ताइक्वांडो एक डिसिप्लिन गेम है, जो कि अगर हम सिर्फ 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम, अगर बहुत कम टाइम है आपके पास तो इतना हम दे सकते हैं, अगर हम इतना सा टाइम देते हैं तो हम फिजिकली फिट और मेंटली भी फिट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है
1: जी
0: और हम अदर्स एक्टिविटी जैसे कि नशा या कुछ गलत एक्टिविटी से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे, एक अपना स्पोर्ट्स, दूसरा अपना पढ़ाई। अगर पढ़ाई में हमें, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बोर हो गए हैं,
1: जी बिल्कुल
0: एक टाइम आता है कि आप 6 7 8 घंटे के बाद थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, अगर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आपका शरीर मतलब तरोताज़ा महसूस करेगा और फिर से आपका मन पढ़ाई में लगेगा।
1: बिल्कुल। तो देखिए सर, ये तो हमने आज आपसे बात कर ली है ताइक्वांडो के बारे में। अब चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि आज का जो दौर है, बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, इस चीज से बचना है तो आपको खेलना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अदर एक्टिविटी है तो आपके पास अदर जो भी चीज़ है आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने भविष्य में अपना कोई गोल सेट किया होगा, अब उस गोल को पे जाने के लिए आपको अदर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो आपका मन पढ़ाई में बड़े अच्छे से लगेगा।
1: तो देखिए सुभाष चंद्र जी, आज आपने इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं आप आज हमारे स्टूडियोज में, और आपने हमसे बात की है ताइक्वांडो के बारे में। इस सब के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
1: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हम अनुमति चाहेंगे कार्यक्रम को संपन्न करने की। नमस्कार, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए खिलाड़ी के साथ। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
2: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: शिमला के चर्चित मनीषा मर्डर मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पवन ने बताया कि मनीषा मित्तल का भाई हिमांक मित्तल ही उनकी हत्या का मास्टरमाइंड निकला है और उसी ने हत्या की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि मनीषा मित्तल का अपने भाई के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था और हिमांक ने अपनी बहन की हत्या करवाने के लिए दो शूटरों को सुपारी दी थी।
2: हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का एक्सेस था, जिससे वह मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल के आने जाने का सारा मूवमेंट ट्रैक कर सकता था। ये सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस हिमांक ने गोविंद को प्रोवाइड किया था। जांच के आधार पर यह सामने आया कि हिमांक ही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था तथा हिमांक ने गोविंद के साथ मिलकर दीपक व आशीष को इस वारदात को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। हिमांक को भी दिनांक 29/6/2024 को रोहतक हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संगठन विस्तार, राष्ट्र निर्माण में कार्यकर्ताओं की भूमिका और विकसित भारत के संकल्प जैसे विषय शामिल रहे। विधायक सतपाल सत्ती भी इस मौके मौजूद रहे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को अपनी शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्ति के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में स्पष्ट उद्देश्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया है।
3: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने

0: काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभाई है। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और संयम के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है।
1: वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय नैना देवी में वाणिज्य संकाय और राजकीय महाविद्यालय जुखाला में विज्ञान व वाणिज्य संकाय बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया है। उन्होंने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और कहा कि इन संकायों की बहाली से क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने घर के निकट ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में हिमाचल देश भर में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं लाहौल जिले की चिट्ठी। लेखक हैं सुरेंद्र कुमार और वाचिका हैं प्रभा शर्मा।
1: जून माह की शुरुआत पंचायती राज चुनाव के परिणामों के साथ हुई। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और लाहौल स्पीति विकास मंच के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कई वार्डों में अंतिम दौर तक रोमांच बना रहा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश से आदर्श आचार संहिता हटा दी, जिससे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग फिर से खुल गया। 15 जून को केलंग स्थित जनजातीय संग्रहालय में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने सभी जनप्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायक अनुराधा राणा और उपायुक्त किरण बड़ाना ने सभी प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास और जनसेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संदेश दिया। बाद में प्रदेश सरकार ने नई पंचायत संस्थाओं के गठन के लिए पुरानी पंचायतों को भंग कर पहली बैठक 27 जून को आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अतिरिक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीआर शर्मा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शकोली का निरीक्षण किया और विद्यालय की कार्यप्रणाली की सराहना की। इस दौरान शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं की टॉपर सिमरन, कक्षा 10वीं की जिला टॉपर विन्नी तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों आशा और ऋषिक को विशेष सम्मान मिला। खेल जगत में जिले के लिए एक और खुशी की खबर तब आई जब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा के छात्र ऋषिक रवांक ने चयन हिमाचल प्रदेश की अंडर 18 एथलेटिक्स टीम में हुआ। अब वे सितंबर में देहरादून में आयोजित नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला व बाल विकास विभाग और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने छोटे बच्चों की स्कूल पूर्व तैयारी को मजबूत बनाने के लिए समर कैंप अभियान शुरू किया है। जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की भाषा, गणित और अन्य बुनियादी क्षमताओं को खेल खेल में विकसित करने के साथ अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिले में 17 से 26 जून तक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों में विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। साइकिल रेस, दौड़, क्रिकेट प्रतियोगिता, संवाद कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केलंग में आयोजित सामूहिक योग शिविर के दौरान भी लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र द्वारा केलंग में फंडिंग एवं नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिला उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, उद्यम पंजीकरण, डिजिटल विपणन तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। कृषि क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र कुकुमसेरी और इफको के संयुक्त तत्वावधान में खेत बचाओ अभियान आयोजित किया गया। किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देकर वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जनसेवा का एक सराहनीय उदाहरण तब देखने को मिला जब घेपन झील से लौट

0: लौटते समय रास्ता भटके दो ट्रैकर्स को पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, डीडीएमए और स्थानीय गाइडों ने संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षित रेस्क्यू किया। सभी एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई की लोगों ने खूब सराहना की। विकास कार्यों की बात करें तो विधायक अनुराधा राणा ने लगभग 26 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली केलंग सीवरेज योजना का भूमि पूजन किया। लंबे समय से लंबित इस परियोजना के पूरा होने से केलंग क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। जिले में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति बहाल होने के बाद प्रशासन ने नियंत्रण वितरण व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य व्यवस्था के तहत की जा रही है। माह के अंतिम दिनों में जहालमा नाले में अचानक आई बाढ़ ने मनाली, उदयपुर और पांगी किलाड़ सड़क संपर्क को बाधित कर दिया। लाहौल स्पीति जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे लाहौल जिले की चिट्ठी। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम ओल्ड हिट्स।

कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते दोस्तों, वक्त बदल जाता है लेकिन उनकी मिठास हमेशा बरकरार रहती है। तो चलिए आज फिर करते हैं सुरों के उस सुनहरे सफ़र की शुरुआत प्रोग्राम ओल्ड हिट्स में। प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं कहीं दिन कहीं रात फिल्म से, आवाज़ महेंद्र कपूर की, SH बिहारी के बोल, OP नैयर का संगीत।

इन दिनों में बीते दौर की एक खूबसूरती बस्ती है दोस्तों, जहां संगीत सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मधुर और यादगार गीत की ओर, जिसे हमने लिया है आई मिलन की बेला फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, शैलेंद्र के बोल हैं शंकर जयकिशन का संगीत।

0: Brandon.
1: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ऑल हिट्स। दोस्तों, पुराने गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, ये यादों का वो कारवां है जो हर बार दिल को छू जाता है। लीजिए सुनिए एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत, आवाज़ आशा भोसले की, प्रेम धवन के बोल है रवि का संगीत।

ओल्ड हिल्स प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत नगमा आरजू फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

और जिस प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों। अब आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत नगमा आरजू फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, हजरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों, प्रोग्राम ओल्ड हिट्स में आज बस इतना ही। आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी।

नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके दिन को और ख़ास बनाने के लिए मैं हूँ आपकी दोस्त हर्षिता। आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा ख़ास कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे एहसास की जो हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जिसमें हमारी पूरी ज़िंदगी समाई है, प्यार। दोस्तों, प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब कोई हमें सच्चे दिल से चाहता है तो लगता है मानो पूरी दुनिया हमारे साथ है, और जब हम खुद किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो अंदर से एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी महसूस होती है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है और जीवन को सुंदर बनाता है। दोस्तों, प्यार भरी इन बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का एक खूबसूरत गीत।

मोहब्बत किसी से कब हो जाए इसका अंदाज़ा नहीं होता। ये तो वो घर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं होता। कुछ तो बात है इन मोहब्बत की गलियों में, वरना हीर के लिए रांझा दीवाना ना होता। दोस्तों, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्यार की। दोस्तों, प्यार की सबसे बड़ी शुरुआत खुद से होती है, यानी दोस्तों सेल्फ लव। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया से भी सच्चा प्यार नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला प्यार जो ज़रूरी है वो है खुद से प्यार। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया हमें और ज़्यादा प्यार देती है। इसलिए खुद की कीमत को जानिए और अपने में खुश रहिए। खुद की इज्जत कीजिए और अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए।

दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, और जब बात करें पहले प्यार की तो ये और भी खूबसूरत बन जाता है। पहला प्यार एक कच्ची डोरी सा होता है जो टूट जाता है पर निशान छोड़ जाता है। पहला प्यार वो है जो कभी भुलाया नहीं जाता, बस दिल में छुपाया जाता है। पहली मोहब्बत अक्सर अधूरी रहती है, पर ज़िंदगी को

दोस्तों बात करें प्यार की और उसमें नोक झोंक का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटी मोटी टकरार और रूठ ना मनाना, ये तो रिश्तों में चलता ही रहता है। यही रिश्तों में एक अनोखी सी मिठास खोल देता है। दोस्तों कभी कभी प्यार हमें दर्द भी देता है, लेकिन वही दर्द हमें सिखाता है कि रिश्ते की कीमत क्या होती है। फ्रेंड्स याद रखिए, प्यार सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूँ कहने का नाम नहीं है, ये मैं तुम्हें समझता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ कहने की ताकत है। ये झगड़ा नहीं इश्क का आगाज़ है, ये झगड़ा नहीं इश्क का आगाज़ है, जहाँ रूठना भी ज़रूरी है और मनाना भी एक रिवाज है।

दोस्तों, प्यार को सिर्फ एक रिश्ता मत समझिए। ये वो शक्ति है जो इंसान को गिरने नहीं देती। जब जिंदगी मुश्किल लगे, जब रास्ते अकेले लगे, तो याद रखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का प्यार आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। और अगर कोई नहीं भी है तो खुद से इतना प्यार कीजिए कि पूरी दुनिया आपकी मुस्कुराहट का कारण बन जाए। क्योंकि जहाँ प्यार है वहीं उम्मीद है, और जहाँ उम्मीद है वहीं ज़िंदगी है।

दोस्तों जिंदगी दोस्तों जिसकी आवाज़ सुनने के लिए सारा दिन इंतज़ार करें वो है प्यार। जिसे झगड़ा होने के बाद भी उससे मनाने का इंतज़ार रहें वो है प्यार। पूरी दुनिया की खुशी मिलने के बाद भी एक इंसान की कमी आपको उदास करें वो है प्यार। जिसको याद करने से ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो है प्यार।

दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मुझे हर्षिता को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ. शाम के 4 बजे हैं. प्रस्तुत है फिल्म संगीत. फिल्म संगीत का पहला गीत हम आपको लिए लेकर आए हैं शोर फिल्म से. आवाज़ है लता मंगेशकर और मुकेश की. संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत.

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। दोस्तों अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में क्रांति फिल्म का ये गीत, संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं जसपाल सिंह की आवाज़ में, फिल्म है सावन को आने दो, गौहर कानपुरी के बोल है राजकमल का संगीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आप शैलजा चौहान को दीजिए इजाज़त। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुने सिरमौरी कार्यक्रम।

तू असो बी सिर मोरी कार्यक्रम सुनने वालों के मेरी राम राम। तू लिया सुनी इस समय आकाशवाणी केंद्र शिमला दा सिरमौरी कार्यक्रम। हाँ मनीषा त्वरी लियो अब बात करूँगी बेटी अनमोल और दहेज प्रथा एक सामाजिक अपराध रे बारे दी। इंद्र साथ साथ हमें कुछ समाचार और लोगी सुनूरा आनंद लोगे। तो सबसे पहले बात करूँगी हमें बेटी अनमोल रे बारे दी। बेटी अनमोल है ये एक नारा ने अति बल्कि समाज री कड़वी सच्चाई बदलने वाली एक गहरी सोच ओसो। पुराने जमाने से भारत दी बेटी देवीरा रूप माना जाओ थिया। आज आधुनिक समय दी बेटी बेटियां हर क्षेत्र दी अपनी काबिलियत साबित कर ले। बेटी परिवार रा गौरव और समाज रा आधार हुंदी ओसो। बेटी प्यार त्याग और

सहनशीलता री मूरत हुंदियो सो। एक बेटी पढ़ी लिखियो दो परिवारों मायके और ससुरालोरा नाम रोशन करो सो। आज री बेटी अंतरिक्षी लयो खेलकूद राजनीति सेना और व्यापार तुड़ी हर क्षेत्र दी पुरुषों रिगुलियो कंधे से कंधा मिलायो चल रही। कल्पना चावला पीवी सिंधु और द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला देश रा नाव वैश्विक स्तरों गाय रोशन किया। पर इतनी प्रगति रे बाद भी आज समाज दी कन्या भ्रूण हत्या दहेज प्रथा और लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियां मौजूद हो सो। बेटियां बोझ समझना समाज रे सबसे बड़े मानसिक

बेटों रे सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा, आगे बढ़ने अवसर देने चाहिए। बेटी परिवार री शान और सम्मान होंदी असो, अपने माता पिता रे जीवन दी खुशियां और प्यार दें दी। बेटी बचपनों से परिवार रे प्रति जिम्मेदारी दिखांदी असो और अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्य रा ध्यान रुक दी असो। परिवार दा प्रेम और आपसी समझ बनाए रखनो दी बेटी रा अहम योगदान हो सो। पहले कोई लोग ये सोचो थी कि बेटा ही परिवार आ सारा बन सको, पर आज ये सोच बदलने लगे। बेटी अपने माता पिता रा सारा बन सोख दियो सो और जीवन रे हर क्षेत्र दी सफलता प्राप्त कर दियो सो और कर ले। आज कोई परिवार बेटी ही अपने माता पिता रे देखभाल कर ले और परिवारी जिम्मेवारी संभाल ली बेटी है। पुराने जमाने समाज दी बेटियों के कोई प्रकारी मुश्किलों का सामना करना पड़ो थिया। शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने के अवसर सीमित हो थे। कोई जगह गाय बेटी बोझ मानी जाओ थी। धीरे धीरे शिक्षा और जागरूकता के कारण लोगों की सोच बदले गए। आज समाज दी बेटियों के सम्मान अधिकार देने गाय अधिक ध्यान दे लिया। शिक्षा और अवसर मिटूनु गाय बेटी अपने सपने पूरे कर लिए और समाज दी अपनी अलग पहचान बनाए ले। शिक्षा व्यक्ति रे जीवन बदलने री शक्ति थो असो। जब बेटी अच्छी शिक्षा मिटली तब्बे सी आत्मनिर्भर बुनली और अपने अधिकार समझ ली। शिक्षित बेटी केवल भविष्य बना देती बल्कि पूरे परिवार और समाज आगे बढ़ाने दा योगदान दो सो। आज बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिकारी, खिलाड़ी और उद्यमी बुनियो देश का नाम रोशन कर लिया। शिक्षा बेटी रा आत्मविश्वास बढ़ाओ और जीवन की चुनौती रा सामना करने के तैयार करो सो। आज बेटियां विज्ञान, तकनीकी, खेल और राजनीतिक, साहित्य, चिकित्सा, सेना, अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान दे लिया बेटी है। तेने साबित कर पाओ कि मेहनत और अवसर मिटणु गाय से कोसी भी ऊंचाई तुड़ी पहुँच सुख दी। ओमो सोबीरा कर्तव्य यही हो सो कि बेटियों रा सम्मान करो और तेनों आगे बढ़ने के प्रेरित करो। तेनारी गुली कोई भेदभाव करना चाहिए। परिवार, विद्यालय, समाज, महिला ऐसा वातावरण बनाओ जैथ बेटी सुरक्षित, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र महसूस कर ली। उमें ये बात समझनी चाहिए कि बेटी बोझ ने आती बल्कि भविष्य री निर्माता ओसो। वास्तव दी बेटी अनमोल हुंदी ओसो। बेटी रे बिना परिवार और समाज री कल्पना करना अधूरी ओसो। आज ये बात री जरूरत ओसो कि बेटी रा सम्मान करो, तेनो शिक्षा अरे अवसर प्रदान करो, तेनारे सपने पूरे करो, तेनारा सहयोग करो। जिस समाज का बेटी रा सम्मान हो तैथे समाज उन्नति री और विकसित हो सो। तब्बे मो हमेशा याद थोड़ो चाहिए कि बेटी अनमोल ओसो। एप सुन दिए एक लोकगीत, चर्चा रोली जारी।

ई लोग ये सुनो में जोगिंदर हावी जीरू। अब बात कर दी दहेज प्रथा एक सामाजिक अपराध असो। दहेज प्रथा भारतीय समाज री एक गंभीर सामाजिक समस्या असो। दहेज अर्थ ब्याह रे समय लड़की रे परिवारों द्वारा लड़के रे परिवार के धन और कुछ वस्तु गाड़ी सोनू चांदी आदि देनो असो। पहले ये परंपरा अपनी इच्छा से थी जो उपहार दे थे ये तो सीमित थी, पर समय रे साथ साथ ये एक सामाजिक दबाव और अपराध रूप बुना। आज कोई परिवार दहेज रे कारण आर्थिक मानसिक और सामाजिक समस्या रा सामना करना पड़ो। आज रे समय कोई जगह ब्याह एक सामाजिक संबंध रे बजाय लेन देन री तरह देखा जाओ सो। कोई लोग शादी सी पहले दहेज री मांग कर दियो सो, जे मांग पूरी न होंदी तो लड़की और तेनारे परिवार उत्पीड़न अपमान और मानसिक दबाव रा सामना करना पड़ो। कोई मामले दे एक घरेलू हिंसा तुड़ी पहुंच जाओ सो। ये बात दहेज प्रथा कोई कारण हो दसो दहेज प्रथा रे जो समाज दे पुरानी सोच देखाओ सो, आर्थिक लालच और बेटी भोज समझनो री मानसिकता इंदिरा मुख्य कारण सो। कोई परिवार समाज दे अपनी इज्जत बड़े थोड़ों की जरूरत से ज़्यादा खर्चा कर दे सो। ये शिक्षा की कमी रे कारण और जागरूकता ना होने रे कारण इस समस्या के बढ़ावा दें दे सो। दहेज

प्रथा रा प्रभाव सबसे ज्यादा लुड़की गाय और तनारे परिवार गाय पड़ो सो। गरीब परिवार गाय इंदिरा बहुत ज्यादा पड़ जाओ, कोई परिवार कर्ज लौनों के मजबूर हो जाते और कोई परिवार बेटी री शिक्षा गाय कम ध्यान दे दे, क्योंकि इसी भविष्य दी धैर्य चिंता कर दे। इंदिरा समाज दी असमानता बढ़ो धैर्य री वजह से पारिवारिक संबंधा प्रभाव पड़ो सो। दहेज प्रथा भारतीय समाज के एक ऐसा कलंक और सामाजिक अपराध असो जो शादी ब्याह जैसे कोई पवित्र बंधन व्यापार दे बदल दे असो। शादी दो परिवारों और दो आत्माओं का मिलन माना जाओ सो, पर आधुनिक युग दी दहेज प्रथाएं इस पवित्र रिश्ते का एक व्यवसाय का सौदा बदला। दहेज जो लड़की के परिवार वाले लड़के के दे दियो सो। आज दहेज प्रथा है भारतीय समाज दी दहेज प्रथारी जोड़े खोखली कर ली। अब बात कर दी जो दहेज प्रथा रा जो दुष्प्रभाव पड़ा सो समाज का, लड़की जन्म सी बोझ समझी जान लगी। इंदेरे कारण लोग बेटी रे जन्म लौनो सी पहले तेनारे गर्भ दी मार ली और जन्म लौनो सी डूर दियो सो, और कन्या भ्रूण हत्या रे ज्यादा मामले देखने को मिलने लगे। घरेलू हिंसा और आत्महत्या रे मामले देखने के मिटने लगे। लड़के वाले री मांग पूरी ना होने रे कारण जो नए नए शादी ब्याह होते तो लड़की मानसिक रूप से तंग हो जाओ और तेनारी जिंदगी नर्क से बढ़े हो जाओ सो, और से अपने कई बारी तो ऐसा देखने को मिट जाओ जो लड़की आप ही खुदकुशी करो सो। इंदिरे कारण असमानता और भेदभाव के बढ़ावा मिटा ये प्रथा समाज की लैंगिक असमानता के बढ़ावा दें सो, जिंदे नए महिलाओं का दर्जा पुरुषों से कम आका जाओ सो। भारत सरकार इस अपराध रुकणु के 1961 का दहेज निषेध अधिनियम बनाया था। इंदिरे तहत दहेज लौना और देना या इंदिरा सहयोग करना कानूनी अपराध माना जाओ। जेल और जुर्माने का कड़ा प्रावधान करता था। हालांकि कानून बनाने नहीं इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि लोग के आज वे दहेज उपहारा नाम दे चोरी चिपे अंजाम दे लिया। दहेज प्रथा पूरी तरह अंत केवल सरकारी कानून सा ने होंदा थी, बल्कि सामाजिक जागरूकता से संभव हो सको। इनके सभी युवा आगे आना चाहिए और इंदिरा विरोध करना चाहिए और बिना दहेज के शादी ब्याह करनी चाहिए, और लड़की ऐसे परिवारों से शादी करनी चाहिए जथ दहेज री मांग ना कर दिया थी, तब्बे ये प्रथा खत्म हो सको। ये बात करो मैं दहेज प्रथा एक सामाजिक अपराध रे बारे दी। अब सुन दी एक लोकगीत।

थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय नैना देवी दू वाणिज्य शाखाए और राजकीय महाविद्यालय जुखाला दो विज्ञान व वाणिज्य शाखाए बहाल करने के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकुरा आभार जताया। तेने आज शिमले दी मुख्यमंत्री से भेंट की और बोलू कि एनो शाखाए री बहाली सा क्षेत्र दे विद्यालयों के अपने घर रे नज़दीक ही उच्च शिक्षा री सुविधा मेटे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोलू कि भारतीय सेना के अपने शक्ति कोसी एक व्यक्ति सी ने आती बल्कि अपने सैनिकों कमांडरों पूर्व सैनिकों तेनारे परिवार और देश नागरिकों के अटूट विश्वास मिटा। जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली दी सेना प्रमुख पद से निर्वृत रे अवसर गाए ये बात बोले। तेने इस बात को गाए जोर दिया जे चार दशकों से अधिक समय भारतीय सेना दा सेवा करनी तेनारी सबसे बड़ा सौभाग्य ओसो। अब सुन दिए एक लोकगीत।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में अभी आप सुन रहे थे सिरमौरी कार्यक्रम। लीजिए आप सुनिए महास्वी कार्यक्रम।

सोशल मीडिया दिवसा रे बारे दे और डिजिटल इंडिया रे बारे दे आज असा तुसा साथे गलबात करनी और कुछ तुसा के खास खास खबरां भी सुनानियां और लोकगीत भी सुनाने। तो जी सभी ते पहले तुसा के आज किया खास खास खबरां सुनाई लीए। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों साथे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने रे लिए खेतों के उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने रा जो है आग्रह करया। तीनों किसानों के जैविक खेती अपनाने की सलाह देते हुए इतने गला पाते जोर दिता कि कृषि क्षेत्रों के विकासों के बिना विकसित भारतों का सपना पूरा नहीं हो सकता। अगली खबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार और जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के आम जनमानुओं तक पहुंचाने का जो है आह्वान करया। तीनों आज उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण अभियानों के समापनों अवसरों पाते जो है कार्यकर्ताओं से संबोधित किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोलिया भाई भारतीय सेना के अपनी शक्ति किसी भी एक व्यक्ति ते नहीं बल्कि अपने सैनिकों कमांडरों पूर्व सैनिकों तीनों रे टबरों और देशों रे नागरिकों रे अटूट विश्वासों ते मिलोई। जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली दे सेना प्रमुख रे पदों ते सेवानिवृत्ति रे अवसरों पाते ही गल बोली। तो जी ए सुनो तुसे लोकगीत।

जी तो लोकगीत सुना तुसें हुकम शर्मा और साथी दी आवाजा दे। ए बी असा गलबात करनी सोशल मीडिया दिवस ओरे बारे दे। तो जी सोशल मीडिया दिवस जिते के समाजिक संजाल दिवस या समाजिक माध्यम दिवस भी बोलया जावा। ये जो दिवस है ये कद दी मनाया जावा तो सभी ते पहले दस लिए कि हर साल आज के दिन मतलब 30 जून है जो है सोशल माध्यम दिवस मनाया जावा। और ये जो है 2010 दे मशेबल साइटों दा शुरू हुआ था। ये शुरू होने का मकसद क्या था? तो जी माणुआ के इत साथे जोड़ना, तिना के जानकारी देना और जो हमारी एक डिजिटल जिते के बोला जावा दुनिया है ये तेरा जो असर है इत के एक रूपों दे समझने रा ये दिन समझा जावा। उदाहरणों के आज के दिन है 30 जून है हमारे सामाजिक संजाल दिवसों पांदे आसे व्हाट्सएप पांदे फेसबुक को पांदे या हमारे इंस्टाग्राम जेड़े मंचा पांदे समाजों दे प्रभाव पांदे चर्चा करूँ है कि ये जो कुछ भी आसे आज के टाइम होता है आज के समय दे आज के समय दे आसे चलाने लगी रहे करने लगी रहे इतरा आसा सभी पांदे या हमारे घर वाले पांदे हमारे बच्चे पांदे या हमारे जो भी युवा पीढ़ी है क्या असर होने लगी रहा। अच्छा बोलो है ना कि हर चीज़ा रा दो पहलू हो है, अच्छा भी होआ बुरा भी होआ। तो जेती आसा के इन चीज़ा रे फायदे होने लगी रहे तो तेती आसा के इन चीज़ा रे नुकसान भी होने लगी रहे। तो सभी तो पहली गल कि क्यों मनाने एडे क्या आवश्यकता पड़ी भी मनाना चाहिए है ना। सभी तो बड़ी गल भी माणु जोड़ने खातर अपने विचार जो भी मारी सोची है ना तो उसे आप बीच बांधने ताई और जो दुनिया है मारी तिना खे जो है एक मारी जो डिजिटल ताकत जिद के बोला जावा इतने के समझने ताई ये मनाना शुरू करया गया। इस दिन जो है सम्मेलन भी हो है दुनिया भरो दे सम्मेलन करो है माणु मिली जुली के इंटरनेट दे जो है अपने अच्छी बुरी गल्ला करो है और जो भी मतलब समझदार गल्ला हो या माणुओं तक पुजनिया चाहिए तीना गल्ला के विस्तार रूप दे समझाया जावा आगे बुझाया जावा। एक किस्म तो ये अभियान समझो तुसे कि जड़े समाज दे महाराज जो भी ये मीडिया रा दिवस है इतने के हैशटैग करके माणुओं के अपनी कहानी साझा करो है। अच्छा चर्चा भी मान लो भी आज के दिन मनाने लग रहे तो इतने पाते चर्चा भी करनी तो चर्चा करनी तो चर्चा की जी पाते करनी है भी तो पता होना चाहिए हो। तो जेड़े हमारे साइबर सुरक्षा है ना तो इतने बारे दे बड़े विस्तारों दे साइब इतने बारे दे चर्चा करी जाओगी या कोई फर्जी खबर हो है ना कोई मानसिक स्वास्थ्य पाते गलबात हो तो इन सभी गल्ला पाते इत दिन जो है चर्चा करो है। तो देखो ए भी जो गल करिए ऐसे साइबर सुरक्षा री तो सब ते बड़ी गल कि आज के समय दे जे ऐसे देखूँ तो सब ते बड़ा मतलब जे एक किस्मत लोगों का माणुआ का नुकसान होने लगी रहा तो साइबर और ही जो ऐसे असुर मतलब कोई गलती कर दूँ थोड़ी जी भी जड़ा कि बहुत ही साथी हुई भी रहा होगा मान लो माखे केसरा फ़ोन आया और माखे बोलता जी आसा तुसा के पैसे देने और पर तुसा आसा के एक ओटीपी दसी दो तो गली एड़ी भी पैसा कौन नहीं चाहता लेना तो बहुत मानु जो है तिना रे इतने दे आई जाओ झांसे दे और से क्या करो है ओटीपी दसी दो है। अच्छा जब ओटीपी देता तो तेते ते बाद सीधी जी गल है भाई एबे तो जो भी खाते दे तुसारे पैसा था क्योंकि आजकल तो सब कुछ हमारे फोनों दे है ना सारा लेन देन फोन उत्ते करने लगी रहे सारा कुछ आ सारे जो भी मतलब कदी मतलब बैंकों तक सीमित चीज़ा थी ऐसे आज फोनों दे उठ चुकी दिया।

एक ओटीपी देने दी वजह ते म्हारा सारा कुछ खत्म हो सकुआ, म्हारी अपनी गलतियां ते। एबे जे देखिया जाए फायदा, तो देखो फायदा भी है, आशा के पैसे हो चाहे नहीं हो, हमारे फोनों दे है गति, पैसा की जरूरत पड़ो, सामान लेने की जरूरत पड़ो, कुछ भी पड़ो, तो आसे अपने फोनों ते लेन देन कर लूँ मैं। पर मारी थोड़ी जी गलतियाँ की वजह से मारे जो साइबर सुरक्षा है इतने पाते फर्क पड़ो। अच्छा फर्जी खबर बोलने की गल ये कि आज के समय दे जे खबर पढ़ने लगो, फोन देखो, तुसे कोई भी तुसे समाचार देखना, कुछ भी देखना, तो सभी ते ज़्यादा तो भाई फर्जी खबर हो गया लगी दिया। माणू ती ना पाते विश्वास कर लो है, विश्वास कर लो बस, तियाँ ते तियाँ आगे ते आगे, मतलब से एक दूजे के भेज देनियाँ से चीज़ा। कोशिश करनी चाहिए भी तुसे, कोई गल नहीं। सोशल जो आसे ये मीडिया चलाने लगी रहे, जो भी आसे सोशल माध्यमों ते संजालो दिवस पाते, मतलब जानकारी देने का मेन मकसद ही ये आ कि करो इत चीज़ा रहा इस्तेमाल, पर इतने भी आदि नहीं हो इत चीज़ा रहे कि भाई तेरे बगैर रह नहीं सको। दूजी गल कि मतलब थोड़ा स्तर करो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आस बोलो ना कि अच्छे दिन आए, तो बुरे दिन भी मतलब इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन आए तो जाहिर गले भी आने वाला टाइम जो है कुछ ना कुछ आशा के बुरा भी मिलना देखने के। तो यही गल है कि ऐसे बहुत सुख लिया इन्हें चीज़ा रहा, जो भी सोशल माध्यम होते हैं सारा, मतलब दिन आगे बढ़े समाज टाइम समय समय साथ है, तो इतने साथ है हमारे जो दिमाग आ, हमारा शरीर आ, स्वास्थ्य इतने पाते बहुत गलत असर होने लगे, हमारी आखिरी नज़र ख़राब लगी रही उन्हें, छोटे छोटे बच्चा के जमदे लगी गए फ़ोन दसने, तो बच्चा रे मतलब जो एक क्या बोली सको तेते थे कि बच्चा रा जो एक दिमागों रा विकास होना था से रुकीगा। बच्चा माए बाप क्या करो थे कि बच्चा जमेगा चलो ऐसा काम करना था, इसके फ़ोन रख दिए या इसके टीवी लगाई दिए, तो बच्चा क्या है भी देखता रहोगा और ऐसा क्या है करो काम निपटाई लेने या ऐसा अपने काम कर लेने। ए भी जी जी ऐसे बच्चा बड़ा होने लगा, 3-4 साल होने लगा, ए भी माए बाप मतलब से होगा भी ए भी हमारा बच्चा जपने को नहीं लगी रहा भाई, आ सारी गली नहीं सुनने लगी रहा, आ कपाया करो बच्चा सुनता ही नहीं है, मतलब बस रोंदे रहना चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं सुनता, ते भी लगो अभी जी जाने डॉक्टर आगे लगी रहे नठने, और डॉक्टर ऐसा ही गला बोलने लग रहा है कि जितना हो सको सोशल मीडिया तो बच्चे के दूर रखो, कंप्यूटर हुआ है ना, फ़ोन हुआ, और जड़े हमारे टीवी कुछ भी हुआ, बच्चे है खास करके छोटे जन्मजात बच्चे से लेके जो मतलब कोशिश करो 10-11-12 साल तक बच्चे के इन चीज़ों से दूर रखो है ना, और आपू समय देना चाहिए, आपू बैठो बच्चे साथ, आपू गल बात करो, आपू बच्चे के कहानियाँ सुनाओ, जो भी बच्चे के मतलब समय देना आपू दो। तो आज तीनों बच्चा के देखो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, मारी थोड़ी जी गलतियाँ रह वजह से, तो बच्चे का मानसिक संतुलन भी खराब होने लगी रहा, स्वास्थ्य पांदे भी असर से, तो बच्चारी गल की थी तो बड़ारी भी मतलब दिमाग को पांदे असर हुई गा, गुस्सा बिना मतलब रहा गुस्सा लगी रहा होने है ना, तो क्योंकि ये चीज़ा ही एड़िया है, तो इतने साथ दिमाग को पांदे तो असर होना ही है ना। तो भाई कोशिश करो कि जितना हो सको बस अपने काम और जा काम किते, जितना कि सारा लेना मतलब फायदे रहते ही कोई काम हो, बाकी नर जहाँ से दे ज़्यादा ना आओ। और हमारे भारतों दे जड़े पता है सभी के कि ये सब चलाने लगी रहे, सब चलाओ ये बच्चे तो लेके शाणा तक लगी रहे चलाने, तो जो भी डिजिटल हमारी इंडिया है ई शासन जड़ी योजना और जो है प्रचार भी होना चाहिए है ना। और हमारे जो सामाजिक माध्यम दिवस जो आशा के सिखावा कि जो भी आशा रहे प्रौद्योगिकी है तरह मतलब प्रयास समाज और हितों दे करना चाहिए हो, और 30 जून इसीलिए चुनी रखा भाई हमारे जो भी गर्मियों के मारे माणू हो ना, जड़े अजकल गर्मियां हैं बड़ी भारी आ, तो हमारे जो भी माणू है सो क्या होए खाली हो बेले हो, दिन और टाइम में कोई काम आने नहीं जाता, तो ज़्यादा ज़्यादा घर बैठी के सब अपने फोनों पाते लगे दे रोए है ना, तो सब सक्रिय रहो भी चल ध्याड़ी अपने फोन चलाया सांझा भ्यागा बाहर ही निकली गए, तो ये तेरे लिए ही इतक है ज़्यादा मतलब ये लगी रे करने तेरे माध्यम होते आज के दिन है कि भाई जितना हो सको और कोई तरीका टोली लो अपना समय निकालने रहा, पर इतने चीज़ा ते बच के रहो जितना हो सको, और अपना भी टबरोरा भी सभी रा बचाव रखो। ये भी सुनो तुसे एक लोक गीत,

तेरे जो तीन बड़े स्तंभ है से अवसंरचना, हर गांव तक इंटरनेट, बिजली और भारतोदय, मतलब 2.5 लाख पंचायत जुड़ी है ते दे मारे सुनली देवी जो है ये तेरा जो है चलिया था कार्यक्रम। और सेवाओं पांदे जे मांग पत्रों बारे गल करिए तो मारे जो भी सरकारी काम है से सारे एबे फोनों पा मतलब ऑनलाइन होने लग रहे सीधी जी गल है सभी के पता है। पहले रह जाओ थे नटते ओरे जाओ पोरे जाओ ते बे कोई मिलो था मानो नहीं मिलो था कोई छुट्टियाँ पाते हो थे। आज के टाइम होते बस एक ही जगह चली जाओ ऑनलाइन अपना जो भी काम करना कराओ, जन्म प्रमाण पत्र कढ़ाना से भी कढ़ाओ, पैन आधार कुछ भी बनाना तो रामोदय बनाई सको है, घर बैठे भी बनाई सको है, किसी के काम करना आपू आओ तो से आपू भी अड़े काम आखे आपू कर सको आ। तो बड़ा भारी ये तेरा जो है अंकी भारतोरा एवे फायदा हो रहा सभी रे खातर। और जे करिए नागरिकों रे सशक्तिकरण रे गल तो डिजिटल साक्षरता ते जो है हर मानुओं के देखो कितना फायदा होने लगी रहा। हमारे फोनों दे ही एवे जो है पैसा ही जाओ तनख्वाह मारी जो हुई, पहले क्या होता बैंक दे जाऊँ थे ते वे लाइना दे लगूँ थे ते वे अपनी तनख्वाह कढ़ाऊँ थे, पर एबे एबे मारे फोन आते टक करके मैसेज आवा कि जी तू सारी तनख्वाह आएगी चाहे चाहे जो मर्जी तनख्वाह आए चाहे से कोई मतलब तनख्वाह आए चाहे किसी के यहाँ लग रही कोई दिव्यांग पेंशन लग रही कुछ भी लग रहा होगा तो सब कुछ आए जाओ आराम दे। और फॉर्म भी आसे ऑनलाइन भर सकू किसी किस्म फॉर्म भरना हो है ना। और देखो जी सभी तो बड़ी गल के थी किसी पैसा देना हो तो फोनों ते ही भेज दूँ है ना, QR कोड आते स्कैन करके दे सको है। और अपना सभी तो बड़ी गल फोना दे डिजिटल लोग करो आ कोई भी मार्कशीट कोई भी मारा लाइसेंस अस सब कुछ ते तेरा एक PDF जो बनाई के अपने फोनों दे रख सकूँ है तो कथी भी जरूरत पड़ो तो एकदम काटी के दे सकूँ कैसी के। तो जी बड़ा भारी फायदा है इन्हें चीज़ा रहा। ये भी सुनो तुसे एक और लोकगीत।

जी तो उर्मिला रे गाय दे लोगीतो साथे चलने रस्समा भी लगी रहूं है। महासूय कार्यक्रम प्रस्तुत करता थे दीपक कुमार। सभी के भारती ठाकुरारी राम राम।

अभी आप आनंद ले रहे थे महाश्वी कार्यक्रम का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम।

pecha hoy tole rup chila pecha yani ya la nyam pu la pecha gya kanang bu an sholan di 1904 du shuru pu ta te ne yang di se kari ta te oil phan bu ga sam chik se na hoy ni bank ya la hoy yang dairy se na yang ma chong ji chala ya la di mang bu fe line tu chue phi la hinu hoji nang dung di gusha okan yang kya kar hoy mi mang chia yul yaru laha pheka hoti yang chun chun laha la yang di hoy mistri chore yang hoy rozgar phekan chore yang mul sakcha phila di yojna e chalai pheka yang sahakarita ki lu lahu pecha la yang mi ya la jal phan bu pecha ro ramda pecha yang sarkar ki na so ya loan nen ja yang hoy di phulen ya पुलन तो कलना रंग पुलन थोपना रंग होती है ला वही मदद भेजा कि यंग कृषि साइकिल तो ऐसे नहीं यंग वाया सांगन चोरे ने ना रे यंग कौन जाए ला वाया यंग लांसा मन की लांसा यंग पिता की लांसा ने ना चोरे वही दिन अंगला शुवेन होगा तैने दी यंग वाया सौरभ की अमूल अमूल रीसेंट होगा यंग होती थे मीनम छिन्मु कंपनी नो वही कोई दी सहकारिता की यंग उदाहरण चिक चिक इनो तेने सहकारिता की यंग आर्थिक विकास ना सहकारिता हो जाए मीना फनबू होगा क्योंकि मेतपू मिला मेतपू मी या मेतपू ला लह पेचा रंग छू यही गुशा होकर नौर या थोपना रंग यंग खोपायला यहाँ डांडा फेनना रंग और जो तोबला डांडा पेचा मी मेतपू ला डांडा पेचा मी चुकुन ला डांडा पेचा यंग यंग मेकन ला डांडा पेचा दिखी चला दिखी नंग दो होगा सहकारिता से ना यहाँ उन्हें और दिन क्योंकतों ना जुंग ये ला यहाँ दी फनबो का यहाँ और आने ये ला दी फनबो का यहाँ दी नांग तो वांग पम्या आने या जोमजी यहाँ स्वयं सहायता समुचुना रे यहाँ कौन जाए की लाहा रे कौन जाए खांग बर देच लाहा पेचा लेना पन्ना रे और दी यार दी नांग तो होगा नांग तेरी यहाँ आने पमोया दि ग्रुप जोन आ रहे हमें तो यंग होती याला फन बोंगा तेने यंग कौन से फिताल पूछी यंग स्टॉल चोरे गिबना आ रहे दिन अंग दो होगा यंग डिजिटल से ना था डिजिटल दांग तेने यंग डिजिटल तकनीक का दिन अंग दो अपना ही चुवेन होगा डिजिटल से ना याला रोम रो रम दबे ना यंग ऑनलाइन ऑनलाइन पंजीकरण पहनना आ रहे दिन अंग दो होगा दीदे मीनांग फनबू होगा तेने हजी बेरोजगार मी याला लहा थोपना यंग आने याला लहा थोपना खोजिरे मूल साकना दिनांग दू होगा दीना यंग टू चुकु याला खोम्बा याला दी मदद थोपना रे दी सहकारिता सम विकास की यंग मदद पहना रे हई और यूल याला मदद पहना यूल चुन चुन याला मदद पहना दिनांग दू होगा इन गबला यंग न्योया लुनेन बुझी आने दिकित की लुनेन बुझी 年冬。

खातर भेजा ओम जिमलिंग की नि चला तो ले लॉ या बुझे खातर भेजा हिनु था थिरिंग की दूसो जो सोंग थिने यांगोला ngo chiring palmula yang yoya tuje she ta ati gabla namu ya talking

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में अभी आप सुन रहे थे स्पीति कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं यशपाल की आवाज में गाया ये मधुर सा लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे यशोदा देवी की आवाज में गाया लोकगीत। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि उचित साइंस, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में जनता की अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोक भवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। उन्होंने गैर सरकारी संगठन एक्ट ह्यूमन द्वारा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है और हर व्यक्ति में अपार क्षमता व शक्ति होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
2: 2014 में मात्र 7 राज्यों में हमारी सरकारें थी। आज 2026 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं कि सत्ता एक सेवा का माध्यम कैसे है, सत्ता में रहकर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू कैसे करें। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन्ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन की और ताकत को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।
1: शिमला जिला प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी, अनाज मंडी, लक्कड़ मंडी और ट्रांसपोर्ट गतिविधियों को शिमला शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शिमला में एक बैठक में बताया कि इसके लिए महली के समीप लगभग

0: 300 बीघा भूमि का चयन किया गया है और आज अधिकारियों की एक टीम ने इस भूमि का निरीक्षण किया है। उपायुक्त ने कहा कि ये भूमि महली शोघी फोरलेन के समीप है, जिससे लोगों व आढ़तियों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, जल भराव और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। खरीफ सीजन के दौरान भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में खरीफ सीजन में मक्की व धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। हमीरपुर के कृषि उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। मक्की व धान की फसल बीमा के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने आज से दस्तक दे दी है। इनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि इन जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में आज मॉनसून की वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और चंबा जिलों में मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दस्तक देने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में कुछ जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: तो आज 30 जून को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मॉनसून ने पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को कवर कर लिया है, साथ में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू को लगभग पूरा कवर है। केवल कुछ एक क्षेत्र शेष हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू के। शिमला और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो चूड़धार का एरिया जो शिमला का एडजॉइनिंग है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल एरिया है वहाँ पे मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा परिस्थितियां अनुकूल है कि जो शेष हमारे डिस्ट्रिक्ट है इसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा है और कांगड़ा का बहुत सारा क्षेत्र है, सोलन है, यहाँ पे आगामी 2-3 दिनों में मॉनसून का आगमन हो सकता है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मिडी वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली पोलियो के कार्यक्रमों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए प्रस्तुत है कांगड़ी कार्यक्रम।

आकाशवाणी दह शिमला केंद्र है। टाइम होया है संजा दे 6:06 ने। समा है कांगड़ी कार्यक्रम दा। कांगड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियों दीपिका ठाकुर दे राम राम। श्रोतियो अज कार्यक्रम च सारे ते पहले गल करते हैं सेहत बारे कि कियां करिए हाँ क्या करी करिए हाँ सेहतमंद रही सकते हैं। जिहड़ी कसरत है व्यायाम जिहड़ा है योग है ये अगर हाँ करते हैं तो हाँ कई बीमारियां तो जोड़े हैं स तिना जो खत्म कर सकते हैं कहीं सेहतमंद भी रह सकते हैं। तो इस पर ही कुछ छोटी जी गलबात लाते हैं। सेहत जी है स माणुए की सारे ते वड्डी जायदाद है। स्वस्थ शरीर च स्वस्थ मन का वास हुंदा है। सेहतमंद नहीं होंगे तो जिंदड़ी की सारी खुशियां जड़ियाँ अधूरियां रही आनियाँ। धन दौलत पद प्रतिष्ठा कामयाबी तो ही सार्थक होंगी जब माणु तंदुरुस्त हो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जिंदड़ी के कुछ भी सुखे का हाँ पूरे तरीके जड़ा है स मजा नहीं ले सकते। देखो पहलकने जमाने भी ना सेहतमंद रहने पर जोर दिता जाता है। आयुर्वेद च भी बोलिया गया है कि स्वस्थ माणु ही अपने टबरे समाज राष्ट्र की तरक्की अपनी हिस्सेदारी दे सकता है। अजकल दे बदल दे जीने दे तरीक़ा बदलता तनाव बेतरतीब आदि जो खान पान है शारीरिक मेहनत की कमी तकनीक दे ज़्यादा इस्तेमाल ते कई बीमारियां जड़ियां हन से आदि शरीर जो लगा दियां हन। ऐसे च अगर रोज़ाना कसरत करते हैं तो काफ़ी हद तक जड़ा है से हाँ बीमारियां तो बची सकते हैं। कने ये जरूरी भी होई है कि हुण जड़ा है थोड़ा टाइम जड़ा है अपने शरीर तां देन कने रोज़ाना कसरत करन। खरा खान पान पूरी निंदर साफ आवो हवा जितने जरूरी हैं तितना ही जरूरी है रोज़ाना कसरत करना।

सेहतमंद रहने ताएं। कसरत शरीर चुस्त मन खुश जिंदड़ी जो ऊर्जावान बनाता है, मांसपेशियां मजबूत होंदियां, दिले फेफड़े जो दुरुस्त रखता है। अगर रोजाना कसरत कर दे तो शरीर जड़ा है सह बीमारियां न लड़ने ताएं भी तैयार होंदा है। शरीर का वजन बदलने ते रोकने च भी मददगार साबित होंदा है। दिमागे ताएं भी कसरत करना फायदेमंद होंदा है। मन शांत रहिंदा है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सारे काम भी दिखा। अगर शरीर खरा होगा ना तो सारे काम भी जड़े है फुर्तिया ने हाँ कर सकते। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिले की बीमारियां, गठिया के अलावा दूजिया कई बीमारियां का खतरा भी जड़ा है सह घटता है। कसरत करनी चालू, अद्धा पौना घंटा कसरत करनी तो भूख भी लगनी, पेट साफ रहना। कसरत करने ते योग करने ते अहां दी जिहड़ी याददाश्त है सह भी बदती है। योग, ध्यान, प्राणायाम अगर करते हैं तो इसते दिमागी शांति मिलती है। अगर अहां दे जिहड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं तिन्हां दी अगर गल करन तो दिखा सहता अहां दे मुल्के दा भविष्य हुंदे। अगर तिन्हां जो रोजाना खेल कूद करना जरूरी है, मतलब तिन्हां ताएं तां क्योंकि सहता नौजवान बच्चे हैं तो असा कर सकते हैं, इस खेलने कूदने ताएं अपना टाइम जोड़ा है दे सकते हैं तो सह जरूर करना चाहिए। इस दे बजाए कि घर च चार दियारियां चंदर बही ने मोबाइले पर फोने पर लगी रहन, तो इस दे बजाए जोड़ा है सह बाहर निकली ने खेलना खेलना खेलन। योग ते अनुशासन, अगे बढ़ने की काबिलियत, आत्मविश्वास, कने कट्ठे मिली करी खेलना ते कट्ठे मिली करी काम करने की भावना जिहड़ी है सह बढ़ती है। तंदुरुस्त शरीर, शांत मन होगा तो पढ़ाई च भी मन लगना। जनानियां दा शरीर दिखा जड़ा हुंदा ना सह बोलदे पई तिन्हां जो कम भी बड़ा बारी करना पौंदा है, कने न्याणे हुंदे तां भी तिन्हां दी वजह ते भी जड़ा है सह कमज़ोर हो जांदा है, तो तिन्हां जो भी कसरत करने की बड़ी जरूरत हुंदी है। कसरत करने ते शरीर मजबूत हुंदा है। गर्भावस्था के दौरान हल्की कसरत जिहड़ी है डॉक्टरी सलाह मुताबक करना फायदेमंद हुंदा। बढ़ती उम्र कने कम जिहड़ा है ज़्यादा नहीं हुंदा तो कसरत करना छड़ना नहीं है, भी कम अहां घट कर सकते हैं पर कसरत जिहड़ी है सह रोज़ाना करनी है। हल्का योग, प्राणायाम, ब्यागासन जां घूमना जिहड़ा है सह बजुर्गों ताएं फायदेमंद है। इसते जोड़ां च लचीलापन बनया रहिंदा, संतुलन बनया रहना, तो तिन्हां दे पौने दा खतरा भी घटना। कने रोज़ाना कसरत अगर बजुर्ग अहां दे करदे हन तो दिखा तिन्हां जो कुसी दी अजकल दा दिखा टाइम ऐसा है कि घरां च जिहड़े सदस्य हुंदे सह सारे कामकाजी हुंदे, तां बजुर्ग कई घरां च थकीले हुंदे, तां सह आत्मनिर्भर बणे रहणे अगर तिन्हां दा शरीर ठीक रहेगा। तो कसरत करने ते पहले थोड़ी दी जिहड़ी है सा कदम ताल कर लैना चाहीदी। कने कसरत करने ते बाद शरीर जो आराम देना भी जरूरी है। पानी खूब पीना चाहिए। अगर कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टरी सलाह जरूर लेना चाहिए कसरत करने से पहले। अगर अहां रोज़ 30 से 45 मिनट कसरत करना तो कई बीमारियों से बच सकते, सुखी सेहतमंद लंबी उम्र की जिंदड़ी जी सकते। इस तरह हर एक माणुए यह संकल्प करना चाहिए कि रोज़ाना कसरत हाँ करनी है। इसके अलावा जो आदि अखे बखे लोग हैं, दुए लोग हैं, तिन्हें जो भी सेहतमंद जिंदड़ी जीना सिखाना है। दर्शो तो यह थी कुछ गलबात, कसरत आदि सेहतें कितनी करी जरूरी है। हुण चलदे मनोरंजन पासे, सुनते हैं प्यार चंद की आवाज़ ये लोग गीत।

श्रोते हुए लोकगीत तो सुने, आवाज़ थी यशपाल ठाकुर दी। दिखा श्रोते हूँ जड़ा है तौंदी खत्म हुई हो है, कने जड़ा है बरसात शुरू ही हुई हो है, तो इस मौसम में अपनी सेहता का भी जड़ा है हाँ सारे जो ही खास ख्याल रखना चाहिए। तो इस कने ही हूँ कांगड़ी कार्यक्रम का समा भी होवा है, सारे अपने श्रोतियां ते इजाजत लेंदे हैं, राम राम।

0: कांगड़ी कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य द ओवल लंदन से आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 पहले सेमीफाइनल।
1: 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कांगड़ी लोकगीत। लीजिए सुनिए सुनपति और लक्ष्मी की आवाजों में ये लोकगीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। 6:35 होने को हैं। लीजिए पेश है लाहौली कार्यक्रम।

जुली नमस्ते थी आकाशवाणी शिमला हिंच थन गी कर्जपई प्रोग्राम दो गीस तंजीनांग में मांची इन हिंची पर छाई दो तिम्रे नियंपो स्वागत लिखत थन थे प्रोग्राम हिंजी ललत नियंपो लिखते ललई मिन ग्रही हुन ललत हिंची पर मेरू चांदनी।

थनथे रेडियो कार्यक्रम गी थुगजे इरांगजे तिकी सकेत की बोंठे फेंके थजु सकेत इरी हिमाचल प्रदेश की इरी राई गरजांग नीजी दांगपोशे गी होश में मिंचन मंदिर त्रिलोकनाथ मंदिर बोंठे फेंके इरी कद नांगलो नांग इरी रेपा बोंठे फेंके इरांगजी गरजे फाक्सपा बोंठे फेंके उथे मंदिर दांगपोशेक जी नीजी उथे इरांगजी होश में ती गरजांग छाई बसल तेजी मंदिर रो मिक्ची हिंचो गरजा फाक्सपा चंद्र जिक्स तो मिक्ची हिंचो थे मंदिर इरी गरजगी जिला उदयपुर रो नीजी थे होश में मिंचन मंदिर भगवान शिव त्रिलोकनाथ व इरी फाक्सपा चंद्र जी तो समर्पित लिखी हिंच छाई बसल तेजी फैस खा हिन लो नंग थे मंदिर रो निस्केर बहुत नांग हिंदू धर्म की मी अमा जल्दे गोइन छो फ्या फूलचा पूजा पाठ लिखचा बुनठे थपजी फ्यस थपजी फक्सपा रो शिव जी भगवान गी रूप ते एन छो तालजी त्रिलोकनाथ महादेव लोची एन छो इरी बोधपा मी जी संगे अवलोकितेश्वरा गी कुंडा हेंच लोची एन छो उथे मंदिर के जी निस्के धर्म गी मी छाई छम ची थुम ची जोइन इंचो त्रिलोकनाथ मिन खरु के हिन लो नंग हिंदू धर्म रो थे सुम्मे लोक स्वर्ग पृथ्वी पाताल गी स्वामी लो नंग कुंचोक शिव भगवान हेंच लोची इंचो उनुनांग थपा मी जी त्रिलोकीनाथ मिन तची हेंचो उथे रिपा फाक्सपा लोनंग एरी गरजई होश में एपो नंग पुईदा सकेत हेंच जगह जगह जी मी यमा सिम्बा थिप नली जी जल्दे गोइन छो ख्या आई न तेजी तेजी प्रा नी जी आई न थोई थोई ल नी जी मू नी जी दंग व इरांग मंग लुम्पा नंग सोती होश में साफ नी जी हिना एकदम साई सुती रही जी गरजे फाक्सपा लोनंग चंद्रभागा लुम्पा इलीचू ग्रुंगपांग रेपारो नी जी त्रिलोकीनाथ मंदिर 100 साल पुराना हेंज लोछा थे मंदिर गी होश मई कचरे नी जी दुरेक थे मंदिर गुंग थापा जी पंडित साधु नंग एरी बोधपा जी मेमे लामा जी तीर्थ स्थल हेन लोछा ख्याताल जी कोरा लिखचा ग्युंशी ठोपा नी जी ख्याताल जो ग्वरी ग्युंशी जी थे रेपा मंदिर गुंग फाक्सपा चंद्र जी की मूर्ति चुक्षी नी जी कुंडा ती चुक्षी नी जी कुंडा कंचिस तो मी ती जी छम्स गुंग जो जोगी ठोपा नी जी व थजु इरांग जो सेम थिप न लीजी एपो लीजी ज्योति गी लब्ज दची हिंजी थ्री त्रिलोकीनाथ मंदिर आई न पुईदा लिशी जी

ग्रांगदो थोंगमिन थोंग मनेछोस ब्रिशी नीजी थर्मांग थेरमांग तेजी तेजी प्रा नीजी रेपागी चू न थिल्दो एलीजी लुम्पा नीजी चंद्रभागा लुम्पा नीजी रेपागुंग थपा मीजी शिव भगवान की पूजा लिछी इंछो तालदो मेन्तो सोती बेलसी बेलपत्र चढ़ाई लिछी इंछो दरुंग थपा जी मंत्र जाप लिछी इंछो इरंग बोधपा मीजी सांग स्थिरची इंछो कुरिम लिखी इंछो छोक्स फुलची इंछो चुनमे लिखी इंछो छाई की पूजा लिखचेगी अपना अपना तरीका ते इंछो दरुंग ख्या रेपा पोरी लोक्य तिकी मिन मिंचन मेला ती रमेज थे मेला हर साल मनाए लिखचुम थे मेला रो एरी गरजई पीती चंबा दरुंग थरमांग थिरमांग ची थे मेला कंचा गोइंछो थे इरांग जो दे नांग मनोरंजन के जीबोन थे मिंच एरी सामाजिक नांग सांस्कृतिक बोंठे रे हिंच रेपा त्रिलोकीनाथ मंदिर एरी गर्जा पर मीजो होश में जरूरी इंच ख नुई लेन क्या नांग या नुई लेन शुरू ली नांग ख तिकेरे गुमाक लिखचा रो कची दुरेक रेपा एलिन छो रेपा एल जी सिम्बत्ति की लीजी गुम गोम ची हेन छो लेन क्या रे बोंठे फाक्सपा चंद्रा जी की आशीर्वाद थिंच बोंठे ख्यारा जी छाई छाई जी मोलम तची हेन छो दुरेक रंग युलगी थरमांग थिरमांग लिक्स की मी अमा जल्दे एलिन छो थनसुम से फिर चू मी जी गोए इन छो थे अटल टनल वांगसिस नांग नुई मी टूरिस्ट जी जल्दे गोए इन छो आने वाले टाइम रो इरांग बेते जी क्या सु क्या ताल जोरे होश में एपो छोचुम ताल जीरे ते मिन छो एरी दुपा जी हिना एपो लिखता द इरांग जो हिना थजू रोक चिपुईदा लिखते द खोम गते थे लोकेत कोंचुई रूप तरह तरह की नीजी खचु धर्म क्या नंग इरांग जो सेम साफ नंग एपो लीजी छोस लिखचा गुनशीन जी सूति किरे मरे लोचुम मेंच छमची थुमची जुम्मेंगी निंगठुस लीनी द थे नंग यंपो थनगी प्रोग्राम ख्या खोम गते गिरो इजाजत दनी।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 7:05 होने को हैं। अब अंग्रेज़ी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: विभिन्न प्रकार के रोग लगने की संभावनाएं आजकल ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे जितने भी बागवान भाई बहन हैं उनको अपने बागीचों में जाना है और देखना है कि किसी प्रकार की कोई रोग सेब की फसलों या अन्य जो फल फसलें उनमें नहीं लगा है, और अगर लगा है तो उसके निदान के लिए समय रहते हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को उसके लिए उपाय करना है, यानी अच्छी दवाई का छिड़काव उन्हें करना है।
1: जी, और देखिए बारिश का मौसम जो है अभी शुरू हो चुका है, यानी अब बरसात का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हमारे किसान और बागवान भाई बहन को ये चाहिए कि वो अपने खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध करें और साथ ही साथ जो है खरपतवार समय रहते वो निकालते भी रहें।
0: जी, तो देखिए शिवरंजन जी, सबसे पहले अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत कर लेते हैं आज के मुख्य मुख्य आकर्षणों की। तो देखिए आज हम काम की बातों के अंतर्गत बातचीत करेंगे पुष्प उत्पादन के लिए जल प्रबंधन के बारे में,
1: जी
0: और साथ ही साथ देखिए प्यारे प्यारे पहाड़ी लोकगीत भी हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए लेकर आए हैं, और एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण जिसका विषय रहेगा गुलदाउदी की खेती। और हमें इस विषय में अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर मणिका तोमर, और इनसे जानकारी हासिल करेंगे अशोक।
1: जी और किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंत में देंगे जानकारी आपको कल के आकर्षण की भी।
0: जी
1: तो कुलदीप जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं काम की बातों के अंतर्गत लिए गए विषय को लेकर के, जो है पुष्प उत्पादन के लिए जल प्रबंधन।
0: जी तो देखिए शिवरंजन जी, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पुष्प उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है, और हमारे बहुत से जो किसान और बागवान भाई बहन हैं वो पुष्प उत्पादन से काफ़ी अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो देखिए शिवरंजन जी, फूलों के पौधे कोमल और मौसमी होते हैं, इसलिए उन्हें नियमित रूप से उचित मात्रा में पानी समय समय पर मिलता रहना चाहिए।
1: जी
0: पानी की कमी से पौधे मुरझाने लगते हैं और फूल पत्तियों की रौनक कम हो जाती है। पौधों में पुष्प उत्पादन की गुणवत्ता पर इसका काफी ज्यादा विपरीत असर पड़ता है। पुष्प उत्पादन के विभिन्न पहलुओं में जल प्रबंधन को अगर हम वर्णित करें तो सबसे पहले देखिए जब पौध उत्पादन करना है तो आपको किस तरह से पानी का प्रबंधन करना है, और साथ ही साथ मौसमी पुष्प उत्पादन में किस तरह से आपको जल प्रबंधन अपनी फूल वाली फसलों या पुष्प फसलों का करना है।
1: जी इसमें किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करेंगे पुष्प पौध उत्पादन के बारे में। देखिए किसान भाइयों, व्यावसायिक पुष्प उत्पादन एवं घरेलू सौंदर्यकरण हेतु मौसमी फूलों का विशेष स्थान रहता है। मौसमी पुष्पीय पौधे किसी भी स्थान को कम समय में अलंकृत करने में सक्षम होते हैं। मौसमी फूलों को सर्द, बसंत, ग्रीष्म व पतझड़ हर मौसम में उगाया जाता है। मौसमी फूलों की पौध तैयार करते समय बुआई से बीज अंकुरण तक क्यारियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें और इसके बाद लगभग 1 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रतिदिन या जरूरत अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्म ऋतु में 2 बार सुबह व शाम को इतनी ही मात्रा में आपने सिंचाई करनी है, और सर्द ऋतु में शाम के समय सिंचाई करने से पाले का दुष्प्रभाव कम हो जाता है।
0: जी, ये तो बात हुई पुष्प पौध उत्पादन के बारे में। साथ ही साथ अगर पौधों का प्रवर्धन किसान भाइयों आप कलमों द्वारा करते हैं तो उसके लिए भी आपको किस तरह से पानी की व्यवस्था करनी है। कलमों में 3-4 बार प्रतिदिन मिस्ट या स्प्रिंकलर द्वारा हल्की सिंचाई आपको करनी होती है, लेकिन इस बात को सुनिश्चित आपको करना होता है कि क्यारियों में जल निकास अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मौसमी पुष्प उत्पादन की बात करें तो मौसमी फूलों की क्यारियों व बॉर्डर में बीज उत्पादन के लिए इन्हें कई बार उगाया जाता है। क्यारियों में बुआई के समय पर्याप्त नमी सुनिश्चित आपको पहले कर लेनी होती है।
1: जी
0: आगामी 1 माह तक 1 सप्ताह में 2 या 3 बार मौसम के अनुसार आपको सिंचाई करनी होती है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं, अगर बारिश होती है तो आपको कम सिंचाई करनी है। शेष मौसमी फूलों में पौध रोपण किया जाता है ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में, सायंकाल तथा शरद ऋतु में सुबह के समय आपको रोपाई करनी होती है। रोपाई के बाद तुरंत आपको सिंचाई अपने पौधों की करनी होती है। मौसमी फूलों में ग्रीष्म ऋतु में सप्ताह में 1 से 2 बार व शरद ऋतु में 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हो। पुष्प खिलते व बीज बनते समय सिंचाई का विशेष ध्यान किसान भाइयों आपको रखना होता है, क्योंकि इन अवस्थाओं में जमीन में नमी की कमी से काफी हानि आपके पुष्प उत्पादन को हो सकती है,
1: जी
0: और फसल पकते ही सिंचाई की मात्रा आपको कम कर देनी होती है।
1: जी किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आपने हरित गृह में कार्नेशन के लिए जल प्रबंधन किस तरह से करना है। किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश में हरित गृह में उगने वाला कार्नेशन प्रमुख फूल है। कार्नेशन कलमों की रोपाई के उपरांत तुरंत सिंचाई आपने करनी है। उसके बाद केआरयू में

0: 50 से 60 प्रतिशत तक नमी बनाए रखें व इसके लिए प्रतिदिन या तीसरे दिन लगभग 2 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में टपक सिंचाई द्वारा आपने सिंचाई करनी है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु में स्प्रिंकल विधि से पुष्पन से पहले तक सिंचाई करना ज्यादा लाभप्रद रहता है, क्योंकि इससे हरित गृह का तापमान भी कम हो जाता है। पुष्पन के बाद टपक विधि द्वारा ही सिंचाई आपने करनी है व क्यारियों में पर्याप्त नमी बनाए रखनी है, अन्यथा हरी पंखुड़ियां फटना शुरू हो जाती है।
1: जी, तो देखिए शिवरंजन जी, ये तो आपने बात की कार्नेशन की खेती में किस तरह का जल प्रबंधन हमारे किसान भाइयों को करना है, साथ ही साथ गुलाब की खेती भी काफी सारे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में की जाती है। तो अगर हमारे किसान भाई जो भी गुलाब की खेती करते हैं, उन्हें जल का प्रबंधन गुलाब की खेती में किस तरह करना है? देखिए, अगर किसान भाइयों आप पॉलीहाउस या हरित गृह में उगने वाले गुलाब की बात करें, रोपाई के उपरांत पर्याप्त मात्रा में सिंचाई आपको करनी है, ताकि क्यारियों में लगभग 60% तक नमी बनी रहनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि सप्ताह में 2 से 3 बार टपक सिंचाई द्वारा लगभग 3 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हिसाब से आपको देना है। शाखाओं में, कलियों में रंगीन पंखुड़ियों का निकलना व पराग केसर बनते समय सिंचाई बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाती है, नहीं तो क्या होता है कि पुष्प उत्पादन व पुष्प गुणवत्ता पर इसका जो काफी ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है। गुलाब की खेती में सिंचाई के ये प्रमुख अवस्थाएं होती है, जिसमें आपको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना होता है।
0: जी, ये तो किसान भाइयों हमने बात करी गुलाब की, अब बात करते हैं गुलदाउदी की भी। गुलदाउदी को कर्तित पुष्पोत्पादन हेतु हरित गृह में उगाया जाता है। रोपाई के बाद टपक या स्प्रिंकल विधि द्वारा ही सिंचाई किसान भाइयों करनी चाहिए। पुष्पन के बाद टपक विधि से ही सिंचाई करें। गुलदाउदी में औसतन 3-4 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन ग्रीष्म व पतझड़ ऋतु में, 2 लीटर प्रतिदिन सर्द ऋतु में पानी किसान भाइयों आपने देना है। कलियों में रंग निकलते समय पर्याप्त नमी भी किसान भाइयों आपने बनाए रखनी है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करें अगर जरबेरा की, तो जरबेरा में रोपाई के बाद आपने सिंचाई करनी है। गर्मियों के मौसम में 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर व सर्द ऋतु में 2 लीटर प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन या तीसरे दिन आपने पानी देना है।
1: तो ये तो बात हुई शिवरंजन जी गुलदाउदी और जरबेरा में हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को सिंचाई का प्रबंध किस तरह करना है। साथ ही साथ देखिए, लिली के पुष्प की खेती भी हिमाचल प्रदेश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में की जाती है। तो लिली में कंद रोपाई के बाद 45 से 50% नमी आपको बनाए रखनी होती है अपने खेतों में, और कंद उगते ही क्यारियों में 60 से 65% नमी आपको बना के रखनी होती है। क्यारियों में टपक या फुहारा विधि द्वारा सिंचाई आप कर सकते हैं। पुष्प कलियां बनने के बाद टपक विधि से ही आपको इनकी सिंचाई करनी होती है, नहीं तो क्या होता है कि बर्ड ब्लास्टिंग बढ़ जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। लिली में 2 से 3 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर या फिर तीसरे दिन आपको देना काफ़ी होता है।
0: किसान भाई, आप बात करते हैं ग्लैडुलस की। हिमाचल प्रदेश की जलवायु ग्लैडुलस की बेमौसमी खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसका प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष में 9 से 10 महीने तक पुष्प उत्पादन संभव रहता है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कंद रोपाई सितंबर से जुलाई तक व पुष्प उत्पादन फरवरी से नवंबर तक किया जाता है। कंद रोपाई समय के आयु में पर्याप्त नमी सुनिश्चित आपने करनी है, यानी कि नमी 50% तक होनी चाहिए। इसके अलावा कंद उगने तक आपने ये नमी बनाए रखनी है। कंद उगते समय नमी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये ग्लैडुलस में विशेष क्रांतिक अवस्था रहती है। दूसरी क्रांतिक अवस्था पुष्प डंडी निकलने की है, जब पौधे में 4 से 5 पत्तियां हो जाती हैं। आमतौर पर ग्लैडुलस में 8 से 10 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है।
1: देखिए, साथ ही साथ किसान भाइयों, आप काफ़ी सारे क्षेत्रों में हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गेंदा की खेती भी की जाती है। गेंदा हिमाचल प्रदेश में उगने वाला अग्रिम फूल माना जाता है। इसकी खेती प्रदेश में बारानी व सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। बारानी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में ये फसल उगाई जाती है, जिसकी रोपाई मानसून आरंभ होते ही की जाती है। वो पौधों की रोपाई के उपरांत एक बार हाथ से आपको सिंचाई करनी होती है। सिंचित क्षेत्रों में ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में गेंदे की फसल उगाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सप्ताह में 2 से 3 बार सिंचाई आपको करनी है, और सर्द ऋतु में सप्ताह में 1 बार आपको सिंचाई करनी होती है। साथ ही साथ अन्य जो गमलों में आप पुष्पीय पौधे उगाते हैं किसान भाइयों, तो उसमें भी थोड़ी सी जल प्रबंधन की हम बात करना चाहेंगे। गमलों में उगे अलंकृत पौधों में ग्रीष्म ऋतु में सुबह व शाम को आपको सिंचाई करनी है।

0: होती है बसंत के मौसम में, पतझड़ और शरद ऋतु में प्रतिदिन एक बार आपको सिंचाई करनी होती है।
1: जी
0: सर्दी के मौसम में शाम को सिंचाई करने से पाले का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। वर्षा ऋतु में सप्ताह में 2 से 3 बार सिंचाई आपको करनी है, वो भी तब जब वर्षा नहीं हो रही होती है। तो देखिए शिवरंजन जी, ये तो हुई अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत पुष्प उत्पादन के लिए जल प्रबंधन के बारे में।
1: जी
0: तो देखिए शिवरंजन जी, इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक प्यारे से पहाड़ी लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना समूह स्वरों में ये लोकगीत। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में समय उचला है जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनवाने का। विषय रहेगा गुलदाउदी की खेती। बातचीत में भाग ले रही हैं डॉक्टर मणिका तोमर और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं अशोक। आइए सुनते हैं।
1: किसान भाइयों, समय समय पर हम आपके लिए कृषि बागवानी से संबंधित समसामयिक जानकारी लेकर आते हैं ताकि आपको खेतीबाड़ी करने में आसानी हो और आप जो है इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सके। आज भी किसान भाइयों, हम आपको जानकारी देंगे फूलों के बारे में। फूलों में विशेषकर गुलदाउदी की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर मणिका तोमर जी, जो कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट है उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। बात चली है गुलदाउदी की, तो गुलदाउदी किस प्रकार का फूल है और कहां कहां ये हिमाचल प्रदेश में लगाया जा सकता है?
2: देखिए, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि गुलदाउदी को हम क्रिजैंथेमम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल है जो कि पूरे देश में लगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खेती उन्नत किसान बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर है। इसमें हम स्टैंडर्ड और स्प्रे दो टाइप के फूल लेते हैं। स्टैंडर्ड का अर्थ है जिसमें हम एक टहनी पर एक ही फूल लेते हैं, तो इस वजह से इसका साइज भी बड़ा होता है। स्प्रे का अर्थ है जिसमें एक टहनी पे हम एक से ज़्यादा फूल लेते हैं, उनका साइज छोटा होता है। इस फूल को हम गमलों में सजाने के लिए, माला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस फूल को लगाने के लिए हमें पॉली हाउस लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। किसान बागवान सीधे खेत में इसको लगा सकते हैं, जहाँ पर 18 से 20 दिन का तापमान हो और रात का तापमान 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो, वहाँ ये फूल आसानी से लग जाता है।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुलदाउदी की जब बात आती है तो किस्मों के बारे में आप बताएं जो कि हिमाचल प्रदेश में लगाई जा सकती है।
2: जहाँ तक किस्मों का सवाल है, मैंने आपको बताया कि इसमें स्टैंडर्ड और स्प्रे दो टाइप के फूल हम लेते हैं। तो स्टैंडर्ड लेने के लिए जो किस्में हिमाचल प्रदेश में उगाई जा रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, वो हैं पूर्णिमा जो कि सफ़ेद कलर की है, येलो स्टार जो कि पीले कलर की है, वाइट स्टार जैसा कि नाम बता रहा है सफ़ेद कलर की, स्नो बॉल, टाटा सेंचुरी ये गुलाबी कलर की है। लेकिन जहाँ तक स्प्रे की बात है, बीरबल साहनी, बागी, सर्फ, वाइट बुके, अजय, नानको, कुंदन, ये कुछ वैरायटीज हैं जो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जब गुलदाउदी की खेती हमारे किसान भाई करते हैं तो कुछ एक समस्या भी उसमें आ जाती है, रोग भी आ जाते हैं, कीट भी आ जाते हैं, तो मुख्य रूप से कौन कौन से रोग जो है गुलदाउदी के फूलों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, इस बारे में आप बताएं।
2: जैसा कि हमने बताया कि इस फूल को उगाने के लिए हम खेत का इस्तेमाल करते हैं, तो जो खेत में मिट्टी है उसी में कई रोगजनक जीवाणु होते हैं। तो मुख्य रोग जो हिमाचल प्रदेश में लग रहे हैं वो है जैसे विल्ट, जब पौधा सूख जाता है
1: जी।

0: विल्ट के अलावा पत्तों के रोग मुख्य हैं गुलदाउदी में, जैसे कि आपके सेप्टोरिया लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, फाइलोस्टिक्टा लीफ स्पॉट और सफ़ेदी चूर्ण यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू फंगस, जो कि सफ़ेद कर देती है पौधे को। इस तरह
1: जी
0: के कुछ रोग हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें अगर समय समय पर हमारी जानकारी के अनुसार, जैसे कि विश्वविद्यालय भी समय समय पर, हमने अपनी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस निकाली है और हम समय समय पर के ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी बताते रहते हैं, तो अगर समय समय पर हम स्प्रे करते रहें और इन दवाइयों का इस्तेमाल करें जो विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदित हैं, तो किसानों बागवानों को कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ता।
1: जी डॉक्टर साहब, बात चली है गुलदाउदी की,
0: जी
1: तो इसमें आपने एक रोग बताया विल्ट।
0: जी जी
1: ये
0: जी
1: रोग किस तरह से लग जाता है, क्या इसके लक्षण हैं, और निदान के लिए हमारे किसान भाई क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उनकी जो ये फूलों की फसल जो है खराब ना हो।
0: जी बिल्कुल, हम बताएंगे। विल्ट रोग ना केवल गुलदाउदी में बल्कि और भी पौधों में बहुत नुकसान करता है। जैसे कि नाम बता रहा है, विल्ट का अंग्रेजी में अर्थ होता है सूख जाना,
1: जी
0: तो इससे पौधा पूरी तरह सूख जाता है, पत्ते सूख जाते हैं और जो हम फूल लेना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी नहीं बन पाती। तो विल्ट रोग मुख्यतः मिट्टी से उपजता है, मिट्टी में रहने वाला जीवाणु है फिजेरियम, जिससे ये रोग आता है। और ये जड़ों के माध्यम से या गुड़ाई करते समय जब पौधे को थोड़ी चोट लग जाती है, तो उससे वो रोगजनक जीवाणु जो है फ्यूजेरियम, वो पौधे के अंदर घुस जाता है। एक बार ये पौधे के अंदर चला गया तो वो पौधे में बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, यानी कि जल्दी जल्दी प्रजनन करता है, जिसके कारण पूरे पौधे में जो पानी लेने की क्षमता है जड़ों से, वो कम हो जाती है। जब पौधा अच्छी तरह अपना पानी और खाद नहीं ले पाएगा तो वो सूखेगा, और जब वो सूखेगा तो वो लक्षण उसके पत्तों पे दिखाई देंगे। विल्ट रोग लक्षण पत्तों का पीला पड़ना है, जो सबसे निचले पत्ते हैं पौधे के जो पहले आए होते हैं, वो पहले धीरे धीरे पीले पड़ने लग जाते हैं। ये पीलापन धीरे धीरे पौधे में ऊपर की तरफ बढ़ता है और ऊपर के पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं। होता क्या है कि पानी का जो जड़ों से फूल तक का फ्लो है वो रुक जाता है,
1: जी
0: क्योंकि ये जीवाणु अंदर बहुत बुरी तरह से अपना घर बना लेता है। और इसके लिए, विल्ट रोग के लिए, हमारा सबसे पहली चीज़ है कि जब आप पौधा लगाएं तो अपनी मिट्टी की अच्छी तरह से दवाई से सिंचाई कर लें। हम डाइथीन M45 और कार्बंडाजिम दवाई इसके लिए रिकमेंड करते हैं कि उससे आप पहले जड़ों के पास सिंचाई कर लें, ताकि ये जो जीवाणु है फ्यूजेरियम, ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए। कार्बंडाजिम जो दवाई है उसको आप आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जड़ों के पास सिंचाई कर सकते हैं, और रोग आने के जैसे ही आपको लक्षण दिखें पहली बार तब, और 20-25 दिन बाद उसके बाद आप इसकी सिंचाई से इस रोग को रोक सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप थोड़ा सा पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है ये भी गुलदाउदी की फसल में लग जाता है,
0: जी
1: किस तरह
0: बिल्कुल,
1: से ये नुकसान करता है, क्या इसके लक्षण हैं, आप बताएं।
0: जी बिल्कुल। पाउडरी मिल्ड्यू, जैसा कि नाम अंग्रेजी में इसका है, तो इसको सफ़ेद चूर्णी फंगस भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे पत्ते पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफ़ेद आटा या पाउडर फेंक दिया हो।
1: जी
0: आप इसके पत्ते देखेंगे तो पूरे सफ़ेद पड़ चुके होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब ये सफ़ेद चूर्ण पत्तों पर जाता है, उसके कारण पत्ता पूरी तरह से सूरज की रोशनी नहीं ले पाता, और जब सूरज की रोशनी नहीं ले पाता तो इसके कारण वो अपना खाना भी नहीं बना पाता। जो पौधे के लिए खाना बनता है वो पत्तों में बनता है। जब पत्तों पे ही ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग जाता है, तो इसके कारण पौधा बिल्कुल बीमार, पीला और सूखा लगता है। जो आपको वैरायटी आप फूलों की देख रहे हैं, तो वो अपना पूरा साइज नहीं ले पाती।
1: जी
0: ये फंगस जो है, हवा में इसके जीवाणु होते हैं और पत्तों पर लैंड करते हैं और पत्तों पर से ही आगे बीमारी फैलाते हैं। इसके लिए हम लोग कैराथिन आधा ML या आधा ढक्कन प्रति लीटर का स्प्रे हम रिकमेंड करते हैं, कि अगर आप जैसे ही ये सफ़ेद रोग शुरुआती लक्षण आपको दिखें, छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे दिखें, तो आप इसका स्प्रे करें। और इसके अलावा आप सल्फर का भी स्प्रे कर सकते हैं, एक एक हफ्ते के दौरान 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सल्फर युक्त फंजीसाइड का स्प्रे इसके लिए रिकमेंडेड है।
1: बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, अगर समस्या फिर भी बनी रहे तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर
0: जी
1: ये
0: बिल्कुल, हम
1: दोबारा
0: स्प्रे
1: से भी दोहरा
0: दोबारा से कर
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं 10-15 दिन के अंतराल पर, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो स्प्रे है ये सुबह जब तेज़ सूरज ना हो या सूरज ढलने के बाद हो, क्योंकि अगर हम दिन दोपहर में इसका स्प्रे करेंगे तो पत्तों पे ये जब स्प्रे होगा तो जलने का खतरा होता है। ये दवाई धूप के साथ रिएक्ट करती है, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह

0: या शाम को इसका स्प्रे करें।
1: जी किसान भाई, इस बात का आप ध्यान रखें कि सुबह या शाम के समय आप स्प्रे करें, क्योंकि इसका जो है आपके पौधों पर विपरीत असर पड़ेगा अगर आप दिन के समय ये स्प्रे करते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ एक आपसे जानना चाहेंगे पत्तों के रोगों के बारे में भी। पत्तों के कौन कौन से मुख्य रोग है और किस तरह से इसका निदान हम कर सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, जो ये गुलदाउदी है जिसे हम क्रिसैंथेमम के नाम से भी जानते हैं, इसमें बहुत सारे पत्ते लगते हैं। अगर आप इसके फूल को ध्यान से देखेंगे, स्टैंडर्ड टाइप में आपको एक ही फूल ऊपर नजर आएगा और बाकी सारा हरा नजर आएगा, क्योंकि इसमें पत्तों की ग्रोथ बहुत होती है। अब क्योंकि पत्तों की ग्रोथ होती है तो हमने देखा है कि पास पास पास पौधे लगे होते हैं, पत्ते एक दूसरे के साथ टच हो रहे होते हैं।
1: जी
0: इसके कारण जो नमी है खेत में, जो नमी है और जो टेम्परेचर है पौधों के बीच में, वो बढ़ जाता है। जब ये नमी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है कि जो जीवाणु आपके मिट्टी में है या जो हवा में है, उनको पनपने का अच्छा मौका मिलता है। तो हम अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो पत्तों पे लगने वाले रोग, जैसे फाइलोस्टिक्टा रोग है,
1: जी
0: जैसे सेप्टोरिया रोग है जो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में लगता है, या अल्टरनेरिया के द्वारा लगने वाले कुछ रोग हैं, इनको हम रोक सकते हैं।
1: जी
0: सबसे पहले तो जो निचले हिस्से के पत्ते हैं 8 से 10 इंच तक, उन्हें निकाल देना चाहिए।
1: जी
0: उससे क्या होगा कि जब बारिशें होती हैं और मिट्टी, बारिश पड़ती है मिट्टी पर, तो मिट्टी उछलती है, मिट्टी उछलने के साथ वो पत्तों में टच करती है। अब क्या होता है, जो जीवाणु मिट्टी में है वो पत्तों के अंदर अपना घर बना लेते हैं। मिट्टी उछल के पत्तों पे गिरती है और पत्तों के साथ वो अंदर घुस जाते हैं। पत्तों में छोटे छेद होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन उन जीवाणुओं को घुसने के लिए उतनी ही जगह काफ़ी होती है। तो अगर हम नीचे के 8 से 10 इंच के पत्ते हटा देंगे पौधे के, तो हम इन रोगों से एक तो मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा, अगर फिर भी फाइलोस्टिक्टा या सेप्टोरिया जैसे रोग आ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि छोटे छोटे भूरे धब्बे पत्तों पर नज़र आते हैं, साइड से भूरे धब्बे और बाहर उनके एक पीले कलर का रिंग बनी होती है, उन भूरे धब्बों को घेरती हुई एक रिंग बनी होती है गोलाकार आकार में, ये सेप्टोरिया रोग के लक्षण हैं।
1: जी
0: और धीरे धीरे ये पूरे पत्ते को कवर कर लेते हैं। उसके लिए आपको कार्बन डाइजिम 0.5 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करना चाहिए पौधे के निचले हिस्से से ऊपरले हिस्से तक, ताकि पत्ते पूरी तरह कवर हो जाए उस स्प्रे से। इसी तरह आपके फाइलोस्टिक्टा रोग है जो जिसमें आप कार्बन डाइजिम भी स्प्रे कर सकते हैं, तो ये भी इसी तरह का रोग है जो पत्तों पे लगता है और पूरे पत्ते को धीरे धीरे कवर कर लेता है। अब होता क्या है, हम कहने को तो ये पत्ते पे लगने वाला रोग है,
1: जी
0: लेकिन नुकसान पूरे पौधे को होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पत्ते क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी को पकड़ते हुए पूरे पौधे के लिए खाने का निर्माण करते हैं, यही भोजन पूरे पौधे को भेजते हैं। अगर पत्तों पे रोग लग जाए, पत्तों पे काले धब्बे आ जाएं, तो पत्ते इतनी अच्छी तरह भोजन नहीं बना पाते। अब जब भोजन की कमी होगी पौधे को, तो वो खाद पानी भी कम ले पाएगा, वो सूखेगा, वो बीमार लगेगा और पौधे की उस तरह से उन्नत ग्रोथ नहीं होगी जैसे कि हमारे बागवान चाहते हैं। तो इसके लिए अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि निचले हिस्से के पत्ते निकाल दें, और रोग के लक्षण जैसे ही हमें पहली बार दिखाई देने लगे, तो हम उसमें कार्बन डाइजिम, जैसे मैंने कहा 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसके ऊपर स्प्रे करें, जिसे 15 से 20 दिन के बाद फिर से रिपीट करें, तो आप इन जो पत्तों पे लगने वाले रोग हैं तो उनसे मुक्ति पा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर मोनिका तोमर जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने गुलदाउदी में लगने वाले रोगों और निदान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो किसान और बागवान भाई बहनों, ये तो सुनिए आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था गुलदाउदी की खेती। और हमें इस विषय में अधिक जानकारी दे रही थी डॉक्टर मणिका तोमर, और इनसे जानकारी हासिल कर रहे थे अशोक। तो देखिए शिवरंजन जी, इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक और प्यारे से लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं कर्नेल राणा की आवाज में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में चलते चलते बात कर लेते हैं कल के मुख्य आकर्षणों के बारे में भी। किसान भाइयों, कल काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है फूलों के हानिकारक सूत्र कृमि व उनकी रोकथाम आप किस तरह से कर सकते हैं। करवाएंगे मनोरंजन लोकगीत से और सुनवाएंगे आपको एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी।
1: तो देखिए शिवरंजन जी, अब तो घड़ी की सुइयां भी हमें इशारा कर रही है कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का। तो अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: कृषि जगत कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: शाम के 7:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
4: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
5: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
6: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
7: अनुभव सीख ही है।

0: असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जायदाद।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमीरपुर जिले के नेरी में स्थापित होगा देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र, लोगों को सृजित होंगे आजीविका के अवसर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु पर जताई चिंता, सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। राज्य के 7 जिलों में मॉनसून की दस्तक, अगले 3-4 दिन अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार व आजीविका के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि इस परियोजना के लिए बायोमास की खरीद 2.5 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत चीड़ की पत्तियों, लेंटाना, बांस और अन्य पौध आधारित बायोमास का उपयोग कर बायोचार का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना से प्रदेश को 28,800 कार्बन क्रेडिट मिलने की संभावना है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोकभवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। उन्होंने गैर सरकारी संगठन एक्ट ह्यूमन द्वारा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है और हर व्यक्ति में अपार क्षमता व शक्ति होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
2: 2014 में मात्र 7 राज्यों में हमारी सरकारें थी, आज 2026 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं कि सत्ता एक सेवा का माध्यम कैसे है, सत्ता में रहकर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू कैसे करें,

0: कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन्हीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन की और ताकत को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।
1: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिले के कल्पा में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आज कल्पा पंचायत में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मिनी सचिवालय बनने से लोगों को एक ही स्थान पर प्रशासनिक व राजस्व कार्य निपटाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कल्पा में पुलिस चौकी के समीप नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में प्रसव के दौरान दम तोड़ने वाली महिला के परिजनों व धरने पर बैठे विभिन्न संगठनों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु होना चिंताजनक है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से बात कर अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगेंगे। उन्होंने इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न करने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शिमला के चर्चित मनीषा मर्डर मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पवन ने बताया कि मनीषा मित्तल का भाई हिमांक मित्तल ही उनकी हत्या का मास्टरमाइंड निकला है और उसी ने हत्या की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि मनीषा मित्तल का अपने भाई के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था और हिमांक ने अपनी बहन की हत्या करवाने के लिए दो शूटरों को सुपारी दी थी।
2: हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का एक्सेस था, जिससे वह मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल के आने जाने का सारा मूवमेंट ट्रैक कर सकता था। ये सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस हिमांक ने गोविंद को प्रोवाइड किया था। जांच के आधार पर यह सामने आया कि हिमांक ही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था तथा हिमांक ने गोविंद के साथ मिलकर दीपक व आशीष को इस वारदात को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। हिमांक को भी दिनांक 29/6/2024 को रोहतक हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया है।
1: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने आज शिमला जिले के रोहडू में 50वीं बुशहर क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता शीलघाट के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने कहा कि युवाओं के चरित्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका है और राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को लेकर राज्य सरकार चिंतित है और इस पर रोक लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में फागु टीम विजेता और ननखड़ी टीम उपविजेता रही। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने आज से दस्तक दे दी है। इनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि इन जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में आज मॉनसून की व्यापक वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और चंबा जिलों में मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दस्तक देने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में कुछ जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: तो आज 30 जून को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मॉनसून ने पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को कवर कर लिया है, साथ में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू को लगभग पूरा कवर है। केवल कुछ एक क्षेत्र शेष हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू के। शिमला और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो चूड़धार का एरिया जो शिमला का एडजॉइनिंग है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल एरिया वहाँ पे मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा परिस्थितियां अनुकूल है कि जो शेष हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा है और कांगड़ा का बहुत सारा क्षेत्र है, सोलन है, यहाँ पे आगामी 2-3 दिनों में मॉनसून का आगमन हो सकता है।
1: तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की काउंसलिंग के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीआर्क और अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट एंट्री के तहत 7 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा लेटरल एंट्री के अंतर्गत आवेदन करने की

0: प्रक्रिया 25 जुलाई तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। खरीफ सीजन के दौरान भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में खरीफ सीजन में मक्की व धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। हमीरपुर के कृषि उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। मक्की व धान की फसल बीमा के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमीरपुर जिले के नेरी में स्थापित होगा देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र, लोगों को सृजित होंगे आजीविका के अवसर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु पर जताई चिंता, सरकार से मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग। राज्य के 7 जिलों में मॉनसून की दस्तक, अगले 3-4 दिन अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय अम्ब के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। योग्यताएं इस प्रकार से हैं। केवल वही महिला उम्मीदवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों हेतु आवेदन करने योग्य होगी जो इन शर्तों को पूरा करती हो। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र की सामान्य निवासी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास होना अनिवार्य है। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित या प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी अम्ब के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2026 समय 5 बजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करें और उम्मीदवार को साक्षात्कार वाले दिनांक 15 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी अम्ब के कार्यालय में उपस्थित होना है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय व संबंधित पर्यवेक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका से संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए।

0: अभी आप सुन रहे थे रोजगार समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम शिमला पर। हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी में 8 बजे हैं और एफएम शिमला पर वक्त है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

स्वागत है आप सभी का यादों के उस गलियारे में जहां वक्त ठहर जाता है और गुजरा हुआ कल एक बार फिर मुस्कुराता है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज़ों में लड़की फिल्म का ये गीत।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए मन्नाडे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में चोरी चोरी फिल्म का गीत, गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

लीजिए सुनिए गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में प्यासा फिल्म का गीत, गीत की बोल साहिर के संगीत, एस डी बर्मन का।

0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
2: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य

0: 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में महल फिल्म का गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए सुनिए जिंदगी फिल्म का गीत, गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। किशोर कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनिए नौकरी फिल्म का गीत। गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत सलिल चौधरी का।

घर सूना सूना है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूंगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में लीजिए सुनिए निगाहें फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। सुनते रहिए FM शिमला। 8:45 होने को हैं अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़क वासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
6: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में

0: ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening.

Chim la per. रात्रि की 9:15 हुए हैं एफएम शिमला पर। वक्त है एक फिल्म से कार्यक्रम का। आज हम बात करेंगे 1986 की एक पारिवारिक फिल्म की, जिसने रिश्तों की गरिमा, त्याग और परिवार की एकता का सुंदर संदेश दिया है। फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर। इस फिल्म का निर्देशन के बापैया ने किया है। फिल्म में जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, पद्मिनी कोलापुरे, कादर खान और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम, और आज हम आपको स्वर्ग से सुंदर फिल्म के गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म की कहानी एक आदर्श ग्राम प्रधान विजय चौधरी यानी जितेंद्र और उनकी पत्नी लक्ष्मी यानी जयप्रदा से शुरू होती है। विजय अपने छोटे भाई रवि यानी मिथुन को बेटे की तरह प्यार करते हैं। विजय ईमानदार और न्यायप्रिय है, इसलिए गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन मिलावट करने वाला दुकानदार मिलावट राम और उसका साला पन्ना लाल विजय से दुश्मनी रखते हैं। वे उसके परिवार को तोड़ने की साजिश रचते हैं।

फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। रवि को मिलावट राम की बेटी ललिता से प्रेम हो जाता है, दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद परिवार में खुशियां आ जाती है, समय बीतता है और लक्ष्मी तथा ललिता दोनों माँ बनने वाली होती है।

कहानी में एक कठिन मोड़ तब आता है जब ललिता अपना बच्चा खो देती है और उसकी जान पर बनाती है। ऐसे समय में विजय और लक्ष्मी अपने नवजात पुत्र को ललिता की गोद में सौंप देते हैं ताकि उसका जीवन

बच सके। ये त्याग फिल्म का सबसे भावुक और यादगार प्रसंग है। इसके बाद पन्नालाल और मिलावट राम परिवार में गलत फहमियाँ पैदा कर रवि को बड़े भाई से अलग होने के लिए उकसाते हैं। परिवार बिखरने लगता है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आती है। रवि को अपने बड़े भाई के त्याग का पता चलता है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है।

फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं। दोस्तों, परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और त्याग का दूसरा नाम है। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आपने स्वर्ग से सुंदर फिल्म के गीत सुने।

नाम, फिल्मों के नाम एक बार फिर सुन लीजिए। नाम, ईमानदार, चश्मे बद्दूर, दो दिलों की दास्तान और नागिन। इन फिल्मों से गीत सुनने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com। जल्दी से कीजिए मेल और सुनिए अपनी पसंद के गीत एफएम शिमला के साथ। पहला मेल हम तक पहुंचा है उत्तम नगर दिल्ली से। भेजने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मेल हम तक पहुंचा है। चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें मेल कर रहे हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार हमें मेल कर रहे हैं। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मेल हम तक पहुंचा है। अगला मेल यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह का मेल हम तक पहुंचा है। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखन, सावित्री बाई देवंगन का मेल हम तक पहुंचा है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, हमें कमल और कमल साहनी, ये हमें पींगावाला चौक जालंधर से मेल कर रहे हैं। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे और सिद्धार्थ गोडाने का मेल हम तक पहुंचा है।

103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। रात्रि के 9:30 हुए हैं FM शिमला पर। वक्त है आपके अपने कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन का। इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। आज जो फिल्में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हैं नागिन, दो दिलों की दास्तान, चश्मे बद्दूर, ईमानदार और

लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानो और करिश्मा शेख का मेल हम तक पहुंचा है। शिव मंदिर कसुमटी शिमला से एलआर गुंजेटा, जमिंता गुंजेटा, अनुज और मुकुल गुंजेटा हमें मेल कर रहे हैं। छोटी बलिया से नूर, आयशा, इकबाल, अखलाक, आमना, आशु जूही और आरजू बागवान का मेल हम तक पहुंचा है।

छत्रपति संभाजी नगर से राजेश पाटिल, राजेश राजदीप, राशि राजेश और शीतल का मेल हम तक पहुंचा है। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिर और भारती बघेल का मेल हमें पंडरिया छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम और डॉक्टर इशिता साहनी हमें मेल कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत कालेगांव से हमें मेल कर रहे हैं सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, सर्वद देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षदा देशमुख का मेल हम तक पहुंचा है।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। अगला मेल हम तक पहुंचा है बागपत उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ये सुनना चाहते हैं नागिन फिल्म का गीत। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हमें मेल कर रहे हैं। नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा का मेल हम तक पहुंचा है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा हमें मेल कर रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत प्रवीण, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिम का मेल हम तक पहुँचा है और ये भी सुनना चाहते हैं नागिन फिल्म का कोई सा भी गीत।

पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भगत, अरुणा भगत, सुलोचना और चेतन भगत का मेल हम तक पहुंचा है। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना हमें मेल कर रहे हैं। जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह का मेल हम तक पहुंचा है। लोहारा दनिया खुर्द, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज और सूरज राजपूत का मेल हम तक पहुंचा है। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से गीता नायक, योगेंद्र नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक हमें मेल कर रहे हैं। अगला मेल हम तक पहुंचा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। भेजने वाले हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा प्रथमेश और पांडुरंग कुंभार का मेल हम तक पहुंचा है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव का मेल हमें अनारकली बाज़ार जगराओं पंजाब से प्राप्त हुआ है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का मेल हम तक पहुंचा है। फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव हमें संबलपुर कांकेर से मेल कर रहे हैं। नई बस्ती गंज द्वारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ और कलीम अंसारी का मेल हम तक पहुंचा है। आप सभी के लिए हम सुनवा रहे हैं नागिन फिल्म का ये गीत।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। अगला मेल हम तक पहुंचा है गांव संदोआ तहसील सुन्नी जिला शिमला से। भेजने वाले हैं डोलाराम, सुमित्रा, ईश्वर और दीक्षित। कोल सिटी बारकाना से अफजल ताज, शाहिना सुल्तान, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक हमें मेल कर रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं नाम फिल्म का कोई सा भी गीत। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो का मेल हम तक पहुंचा है। जीआर पॉल और पूरा पॉल परिवार जालंधर पंजाब से हमें मेल कर रहे हैं। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहाँ और मरियम जैनब का मेल हम तक पहुंचा है। खैल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा हमें मेल कर रहे हैं। साथ ही शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल और डुग्गू और भाविका सिक्का का मेल हम तक पहुंचा है। असपुरा जिला मऊ से मज़र अली अंसारी, रज़िया बेगम और मोहम्मद सादिक अंसारी हमें मेल कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानंद

केले विश्व दीपेले और शेरी वडनेर अकोला से आदित्य दामोदर और अरुणा दामोदर हमें मेल कर रहे हैं। अगला मेल हम तक पहुंचा है सहारनपुर चंद्रनगर से। भेजने वाले हैं सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी हमें मेल कर रहे हैं। जलालाबाद वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का मेल हम तक पहुंचा है। जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ का मेल हम तक पहुंचा है। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का मेल हम तक पहुंचा है। एकता कलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल और तन्वी बोध हमें मेल कर रहे हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दत्तार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का मेल हम तक पहुँचा है। कृष्ण की नगरी मथुरा से लुबना अंसारी, सबा अंसारी, नंदिनी और अंजलि हमें मेल कर रहे हैं। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे हमें मेल कर रहे हैं। आप सभी के लिए हम सुनवा रहे हैं नाम फिल्म का ये गीत।

अगला मेल हम तक पहुंचा है कुलशोभा कॉटेज सुनाम पंजाब से। भेजने वाले हैं विरोचनपुरी, भारतीपुरी, डॉक्टर के आर पुरी, भारतीपुरी, सौरभ, ज्योति, इताश, पर्णिका, रिद्धिपुरी और मास्टर वाहिनपुरी।

नर्मदा पार्क, मंगल बेड़ा से अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल हमें मेल कर रहे हैं। देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय का मेल हम तक पहुंचा है। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय और जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय हमें मेल कर रहे हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष हमें मेल कर रहे हैं। पहाड़ीगंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का मेल हम तक पहुँचा है। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा हमें मेल कर रहे हैं। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस का मेल हम तक पहुंचा है। साथ ही चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा हमें मेल कर रहे हैं।

दो दिलों की दास्तान इस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम ये हमें गुमला झारखंड से मेल कर रहे हैं। ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का मेल हम तक पहुंचा है। आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और मैंडी शर्मा हमें मेल कर रहे हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का मेल हम तक पहुंचा है। आप सभी के लिए हम सुनवा रहे हैं दो दिलों की दास्तान फिल्म का ये गीत।

नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साईं गायकवाड़ का मेल हम तक पहुंचा है। साथ ही झज्जर हरियाणा से बिटू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया हमें मेल कर रहे हैं।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है गजलें, लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

ख्वाहिशें, मुलाकात और फिर बिछड़ जाना, यही तो मोहब्बत का दस्तूर है। जो लोग दिल के सबसे करीब होते हैं, अक्सर वक्त और हालात उन्हें हमसे दूर कर देते हैं, पर वो दूर जाकर भी हमारी यादों से जुदा नहीं होते हैं। लीजिए सुनिए चंदनदास की आवाज़ में ये गज़ल।

0: अपना ख्याल रखिए, अपनों से मोहब्बत करते रहिए और सुनते रहिए FM शिमला।
1: प्यार फुहार पिया ना जा भीगी भीगी बातों में सांसें मिली मत।
0: अभी आप सुन रहे थे गजलें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है सदाबहार नगमे कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में हमजोली फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में लीजिए सुनिए अनुराग फिल्म का गीत। गीत की बोल आनंद बख्शी की, संगीत एस डी बर्मन का।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के संगीत एसटी बर्मन का।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: लीजिए सुनिए आई मिलन की रात फिल्म का गीत। आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की हैं। समीर ने गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम। लीजिए सुनिए बैराग फिल्म का गीत। आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं। आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की।

0: थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting